वज़ीर आज़म मुख़्तसर वफ़द सां गॾु न्यूयॉर्क पहुची वियो। शहबाज शरीफ गयल क़ौमुनि जे जनरल असेंबली जे क़यासी इजलास में शिरकत कंदो। वज़ीर आज़म 25 सेप्टेम्बर ते ख़िताब में इलाइक़ाई ऐं आलमी सलामती जी तब्दील थींदड़ सूरताल जे हवाले सां पाकिस्तान जो मौक़िफ़ पेश कंदो। ॻाल्हियुनि सफ़ारतकारी ऐं तकरारनि जे पुरमुन हल जी अहमियत ते ज़ोर पिण भरियो वेंदो। ईरान जो परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़ी न्यूयॉर्क पहुची वियो। अब्बास इराक़ी गॾियल क़ौमुनि जे जनरल असेंबली जे इजलास में शिरकत कंदो। ईरानी सदर मसूद पज़िशकियान बि अॼु न्यूयॉर्क पहुचंदो। गॾियल क़ौमुनि जे जनरल असेंबली जे इजलास में शिरकत लाइ अमरीका पारां सदर मसूद पज़िशकियान, परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़ी ऐं ईरानी वफ़द खे अमरीका जो वीज़ा जारी कयो वियो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो न्यूयॉर्क खां जमायत इस्लामी जे अमीर हाफिज़ नईम रहमान खे फोन, मार्च मुल्तवी करण जी दरख़्वास्त। जमायत इस्लामी जे तर्जुमान जो चवणु आहे त हाफिज़ नईम रहमान खे मुल्तान पहुचण ते वज़ीर आज़म जी फोन आई। वज़ीर आज़म जमायत इस्लामी खे वतन वापसि पहुचण ताईं मार्च मुल्तवी करण जी दरख़्वास्त कई। हाफिज़ नईम रहमान वज़ीर आज़म खे ॿुधायो त असां हुकूमत सां टकराउ नथा चाहियूं, असां अवामी हक़ लाइ निकिता आहियूं, हुकूमत खे उहो हक़ ॾियणो पवंदो। जेकॾहिं हुकूमत जी दरख़्वास्त ते मार्च मुल्तवी करे बि छॾियूं पर तव्हां हथ न खणंदासीं, मुल्तवी करण जी दरख़्वास्त ते शूरा जे मशूरा बाद रद अमल ॾींदासीं। अहमदाबाद जा 24 तइलीमी इदारा अॼु खां बंदि करण जो फ़ैसिलो। ज़रियनि जो चवणु आहे सरकारी स्कूलनि में इज़ाफ़ी पुलिस नफ़री खे तरसाइण जा इंतज़ाम कया विया आहिनि। इस्लामाबाद में ट्रैफिक मामूल मूजिबि रवां दवा आहे, रस्तनि ते कंटेनर मौजूदु आहिनि, सिक्योरिटी ख़दशनि सां रेड ज़ोन खे सील कयो वियो आहे। ॿिए तरफ़ रावलपिंडी में तइलीमी इदारा मामूल मूजिबि खुलियल आहिनि। जमायत इस्लामी जो पेट्रोल एम लेवी ख़िलाफ़ इस्लामाबाद तरफ़ निकितल ट्रेन मार्च मुल्तान पहुची वियो। मार्च में शरीक कारकुन अॼु राति मुल्तान में तरसण बाद सुबुह जो इस्लामाबाद रवाना थींदा। जमायत इस्लामी जे अमीर हाफिज़ नईम रहमान चयो आहे त पहिरियों मरहलो गुज़री वियो, हू ॿिए मरहले में दाख़िल थी चुका आहिनि। बलोचिस्तान जे जबलनि ऐं मैदाननि मां बि मार्च शुरू थी चुको आहे। रुगो हिकु ई मुतालबो आहे त लेवी भत्तो ख़तम करियो। तेहरान जे दौरे ते पहुतल वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जी ईरानी सदर मसूद पज़िशकियान सां मुलाकात। इलाइक़ाई ऐं आलमी सूरतहाल ते ख़्यालनि जी ॾे वठि। ईरानी सदर पाकिस्तान ऐं ईरान विच में राबता वधाइण ते ज़ोर भरींदे चयो आहे त पाकिस्तान ऐं ईरान गॾियल सरकार खे सभिनी शोबनि में वधीक मज़बूत बणाए सघनि था। मक़ामी ऐं इलाइक़ाई सुर सलाहियतुनि सां पंहिंजूं ज़रूरतूं ऐं पूरियूं करे सघजनि थियूं। अमरीकी दबाउ मुस्लिम मुल्कनि में वधीक वेझड़ाए राबतनि खे हथ ॾिनी आहे। मोहसिन नक़वी जो चवणु आहे त पाकिस्तान वापार मैशियत सियात ऐं सियासत समेत सभिनी शोबनि में सहकार वधाइण लाइ पुरज़ुम आहे। सकाफ़त ऐं साइंस जे शोबनि में बि ईरान सां सरकार खे वधीक हथी ॾिनी वेंदी। पाकिस्तान ऐं सऊदी अरब सफ़ारती ऐं सरकारी पासपोर्ट रखण लाइ वीज़ा जो शर्त ख़तम करे छॾियो। न्यूयॉर्क में नाइब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ऐं सऊदी अरब जे परॾेही वज़ीर फैसल बिन फरहान पारां मुआहिदे ते सहियूं कयूं वयूं। नाइब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चयो आहे त उहो क़दम पाक सऊदी आला सतही राब्तनि में सहूलियत ॾींदो। मुआहिदे सां गॾियल मुफ़ादनि जे शोबनि में बिरादर मुल्कनि जी स्ट्रेटजिक भाईवारी बि वधंदी। हुकूमत ॿिनि ॾींहनि जे वक़फ़े खां पोइ पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में फेरफार करे छॾी। पेट्रोल 4.61 रुपया फी लीटर महांगो, नओं अघु 393.75 रुपया मुक़ररु। डीज़ल 1.96 रुपया फी लीटर सस्तो थियण खां पोइ

0: 22 रुपया 8 पैसा थी वयो। जारी कयल नोटिफिकेशन मूजिब पेट्रोल ऐं डीजल जा नवा अघ 22 सेप्टेम्बर लाइ हूंदा।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: Yeah!

0: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जा कतरा जरूर प्यारियो, छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इनन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
1: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है, इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराय तो जवाबित लागू हैं।
2: धर माशुम वरकोटी वरकोटी कदमुना दयो निवी दुनिया पलोर रवानवी, खुदा पोलियो रंज दा कदमुना उद्रवले हुमशी, नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम प महाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकूलो जवाब वरकवई, अखपल माशुमानो ता द पोलियो द मखनिवी द्वसास की वरकवल महेरवई, जकच हम द गसास की द माशुमानो द बदन दिफाई ताकत ज्यातवी औ द हगी द खूबुन वलवत वजरिमुमी। पोलियो यानी मुस्तकिल माजूरी।
3: This program is brought to you by
1: Bank Islamni Laya, Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing.
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल,
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
5: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी,
4: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली, वधिक मालूमात लाए बुड़ी 247-32-41-200।
4: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
5: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन के बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीहन जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
2: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जा कतरा जरूर प्यारियो, छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ऐं इन्हन जे ख्वाबन के उडाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं ॿारनि

0: मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% एं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी उहा बे डी घुराए पूरी करे डींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबह 9 खां 6:30 बजे शाम ताईं। नोट असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
1: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: माओ आहे सिंध के टोड़न वारी साजिश पूरी थियण न ॾींदासीं. ऐं खानपुर भरिसां हथियारबंदनि जे ईंदड़ वींदड़ गाॾियुनि खां फुरलुट मुसाफ़िरनि जो चवण आहे त इंडस हाईवे ते रहीमाबाद लाड़ी वटि हथियारबंद बस मां लाहे लखे रुपया रोक रक़म मोबाइल फोन ऐं ॿियो सामान फुर करे विया आहिनि. पुलिस मुनमान बहाल कराइण में नाकाम बणिजी वई आहे.
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
4: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज.
5: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है. सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है. अब जिम्मेदारी हम सब की है. हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं. पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी.

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
2: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
2: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हईअ में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
2: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
2: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
3: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 03125252786।
3: जी हा, 2315525786।
2: GAFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज। सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: दुनिया हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जदहें भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो, छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इनन जे ख्वाबन के उडाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
2: धर माशुम वरकोटी वरकोटी कदमुना द यो निमि दुनिया पलोर रवानवी, खुद पोलियो रंज दा कदमुना उद्रवले हुमशी। नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम पा महाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई, अखपल माशुमानुता द पोलियो द मखनीवी दो सास्की वरकवल माहिरवई। जक चुहम द सास्की द माशुमानु द बदन दिफाई ताकत ज्यातवी और द हगी द खूबुन वलवत वजर मुमी। पोलियो यानी मुस्तकिल माजूरी।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज। GFM 90.4

0: आप सुन रहे हैं GFM ETH नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है। हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन 5H ब्यूटी क्रीम।

0: वाइट एज ब्यूटी क्रीम, 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां, जिससे मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अमर सिंध के सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
2: डुखोयल इंसानियत की खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकानी चौक मातली ते औरतुन के बीमारियों की माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
2: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण और तुंजे मखसूस बीमारियन, हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियन, कमजोरी, आई औरतुन आई बारडन जो इलाज, आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे, आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी, आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकानी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए 2347-3141-230।
1: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी, मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% एं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी, उहा बे डी घुराए पूरी करे डींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुंचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबह 9-6 बजे शाम ताई। नोट असां वट लूज गोरियों या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
2: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: अपना शहर, अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: 11:45 AM. The time check is brought to you by
1: Bank Islam, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
2: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज.
4: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो. इन्हीं करे जदहें भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जा कतरा जरूर प्यारियो. छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इनन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था. पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी.
5: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो. डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GAFM 88 नेटवर्क ते.
6: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: बैंक इस्लाम, पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग.
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है.
2: सुनते रहो GAFM 90.4.

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: It's 12 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: मार्शल सैयद आसिम मुनीर पारां कोर हेडक्वार्टर्स पिशावर जो दौरो हर वक्त चौकस रहण ऐं ऑपरेशनल तयारी बरकरार रखण जी हिदायत SPR मौजूद फील्ड मार्शल खे KPK जी सिक्योरिटी सूरतहाल ते ब्रीफिंग ॾिनी वई. सूबे में जारी दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ ऑपरेशनल सरहदी इंतज़ामनि फार्मेंस जे ऑपरेशनल तयारियुनि बाबति बि आगाह कयो वियो. फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चयो त शहीदनि जे कुर्बानीनि खे विसारे नथो सघे. फ़ौज दहशतगर्दनि खे शिकस्त ॾियण ऐं मुल्क में जटादार अमुन जे क़याम लाइ पुरज़म आहे. पाकिस्तान सऊदी अरब तुर्किया ऐं मिसरी परडे॒ही वज़ीरनि जे न्यूयॉर्क में मुलाक़ात. खिते जी सूरतयाल समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ॻाल्हियूं. खिते जी सूरतयाल ऐं अमन जे क़याम बारे कोशिशनि जारी रखण ते इतफ़ाक़. नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार सऊदी ऐं लिबनानी वज़ीर परडे॒ही सां अलॻि अलॻि मुलाक़ातूं बि कयूं.

0: निज़ाम में रवानी जंगबंदीअ जी भञकड़ी थी रही आहे। तकरार जे निबेरे लाइ तकड़ा कदम ज़रूरी आहिनि। फलस्तीनी बाबति कमेटीअ खे ख़िताब कंदे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चयो आहे त अमेरिका मिसर कतर ऐं तुर्किया जूं फलस्तीनी मसइले ते कोशिशूं सारा जोगियूं आहिनि। गज़ा समेत फलस्तीन जो मसलो हल करणु घुर्जाउ आहे। वरी वज़ीर सैद मुराद अली शाह सां खुराक जे आलमी इदारे जे नुमाइंदे अनीता हर्ष जी मुलाक़ात। स्कूलनि में खाधे जी फरामी अॻुवाट कदमनि ऐं समाजी तहफ़ुज़ात सहकार वधाइण ते गौर कयो वियो। सिंध हुकूमत ऐं गॾियल क़ौमनि जे खुराक बाबति आलमी इदारे विच में सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़। सैद मुराद अली शाह चयो त सिंध मौसमियाती तब्दीली सबब सभ खां वधीक मुतासिर थींदड़ ख़ितनि में शामिल आहे। ग़िज़ाई कोर्ट खे मुंहुं ॾे ऐं स्कूलनि में हाज़िर बहितर बणाए मज़बूत सिंध जो बुनियाद रखियो पियो वञे। टंडो गुलाम हैदर वेझो परणियल नारीअ जो घर मां फाओ लगल लाश हथ वारसन जो सहुरनि ते क़तल करण जो इल्ज़ाम। गोठ जीओ कोली में रवीना ज़ाल केवल कोली जो घर मां लाश मिलियो। पीउ ऐं चाचे पारां मुड़ुस ऐं सहुरनि ते नारी खे तशद्दुद करे क़तल करण जो इल्ज़ाम। जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करण जो मुतालबो। कंबर जे इलाइक़े कुबो सैद खान भरिसां गुज़िरियल ॾींहुं क़तल कयल नौजवान जे धड़ खां धार कयल सिसी हथ। नौजवान मंज़ूर चांडियो जो गुज़िरियल ॾींहुं सिसी खां धार कयल लाश मिलियो हो। कंदकोट में सिंध जे इम्कानी विरांगे ख़िलाफ़ एसटीपी जे एहतजाजी रैली। कारकुननि एसटीपी आफ़ीस खां प्रेस क्लब ताईं रैली कढी एहतजाज कयो। अॻवाड़नि चयो त सिंध धरती असांजी माउ आहे। सिंध खे टोड़ण वारी साज़िश पूरी थियण न ॾींदासीं। मदेजी में 2 महीना अॻु क़तल थियल नौजवान जे खून जो जरगो ज़रिए निबेरो। इल्ज़ाम हेठि आयल धरती धुर ते 55,00,000 रुपया ॾंढ मुक़रर। कुमारिया हाउस ते नजफ़ खान जे सरपंची हेठि ओशाक जखरियो जे क़तल जो जिर्गो थियो। क़तल जे इल्ज़ाम हेठि आयल जुणे जा शहर ऐं मंगरिया बिरादरी जे जवाबदारनि मथां 55,00,000 रुपया ॾंढ लागू कयो वियो। ओशाक जखरो जे खून जे बहा 25,00,000 रुपया ऐं नाक क़तल करण जा 25,00,000 रुपया चटी विधी वई। धुरियूं मक़तूल जे वारसनि ॾे मेड़ खणी वेंदियूं। ॾंढ जी रक़म मिलण बाद मुतासिर धुर राज़ीनामो लिखी ॾींदी। खैरपुर में शागिर्दियाणीअ खे मुंबई नाल अॼु लुट वारो निशानो बणाईंदड़ जवाबदारनि जी गिरफ़्तारीअ लाइ एहतजाज। शागिर्दियाणी जे वारसनि ऐं शहरनि गाड़ी मोरी रोड खां रैली कढी एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। मुज़ाहिरीन मूजिबि पुलिस नियाणीअ खे लया लुट जो निशानो बणाईंदड़ जवाबदारनि खे गिरफ़्तार न करे रही आहे। जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वञे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंध के माथे का झूमर
3: GAFM 88 नेटवर्क
4: सिंध की आवाज।
5: धर माशूम वर कोटी कदमुना दयो निवी दुनिया पलोर रवानवी। खुदा पोलियो रंज दा कदमुना द्रवले हुमशी। नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम पमहाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई। اخپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول مه هیروي، ځکه چې هم دغه ساسکي د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي. پولیو یعنی مستقله معذوري.
6: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو
7: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
6: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
7: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
6: اولاد جو نتھین औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 247-3141-200।
6: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग 9:30-6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
7: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
6: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
7: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
6: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
7: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
6: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 03125252586।
7: जी हा, 2315-2576।
6: GAFM रेडियो नेटवर्क,
7: सिंध जो आवाज़।

0: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
1: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जदहें भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो, छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इन्हन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: मेरा फैन। White H Beauty Cream 5-Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिससे मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
2: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन, हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी, आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे, आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
1: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
2: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: ऑफ एस टी पी जे एतजा जी रैली कारकुनन एस टी पी ऑफिस का प्रेस क्लब ताईं रेस कयो न ॾींदासीं। फेसगंज जे पुछड़ीनि में पाणीअ जी खोट शिदत इख़्तियार करे वई। फेसगंज एक्शन कमेटीअ जो बान फेसगंज वेओवाह अली नवाज वाह ऐं पंद्रहवाह में पाणीअ जी शदीद खोट ख़िलाफ़ एक्शन कमेटी पारां मेहरान हाईवे खां रैली कढी पका चांग जे मुख चौक ते धरणो वियो। मुज़ाहिरनि जो ज़रई पाणी फराहम करण जो मुतालबो। मदेजीअ में ब महीना अॻु क़तल थियल नौजवान जे खून जो जिर्गो ज़रिए लिबेरो इल्ज़ाम हेठि आयल धुर ते 50 लख रूपया ॾंड मुक़रर। कुमारिया हाउस ते नजफ़ ख़ान कुमारियो जी सरपंची हेठि ओशाक जखरियो जे क़तल जो जिर्गो थियो। क़तल जे इल्ज़ाम हेठि आयल जुड़े जा शर ऐं मंगरिया बिरादरी जे जवाबदारनि मथां 50 लख रूपया ॾंड लागू कयो वियो। ओशाक जखरियो जे खून जे वारसनि बहा 25 लख रूपया ऐं नाहक क़तल करण जा 25 लख रूपया चटी विधी वई। धुरियूं मक़तूल जे वारसनि ॾे मेड़ खणी वेंदियूं। ॾंड जी रक़म मिलण बाद मुतासिर धुर राज़ीनामो लिखी ॾींदी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे बारन के पोलियो खां बचाव जा बा कतरा जरूर पियारियो। छो त ये कतरा बारन में मुदाफ़ती ताकत के वधाइन था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माज़ूरी।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ ख़ुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रूपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
5: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962 4345

0: 5. Address: Tando Ghulam Ali Road, Mathli.
1: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
0: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
0: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफ एम मातली बदीन।
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 0331252576।
0: जी हा, 2315525786।
1: जीए एफ एम रेडियो नेटवर्क,
0: सिंध जो आवाज़।

खूबसूरती और खूबसूरती को मेंटेन भी रख सकते हैं। इसी के साथ साथ डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों के साथ बातें होने वाली हैं। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए जनाब बहुत ही कमाल के प्रोडक्ट्स लेकर हाजिर खिदमत है, जिनमें आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है और डी स्किन फेस वॉश मिल रहा है। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स जो कि आपकी खूबसूरती के मुताबिक ही तैयार किए गए हैं, आप हर एक इंसान की स्किन से रिलेटेड ही जनाब ये प्रोडक्ट तैयार किए गए हैं। क्योंकि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव हो, ऑयली हो, ड्राई हो, नॉर्मल हो, कॉम्बिनेशन टाइप हो, तो हर तरह से अगर आप अपनी स्किन को लेकर परेशान रहते हैं तो भैया आपकी परेशानियों को दूर किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपकी खूबसूरती के लिए क्यों और कैसे जरूरी है। बिल्कुल जनाब बहुत ज्यादा वाली बातें हैं जो कि आप लोगों के साथ करनी है, लेकिन कहते ना कहते नहीं जल्दी क्या है, अभी तो हमने स्टार्ट किया है। तो बिल्कुल सर अपना भी तारीफ करवाते हैं, सो लिसनर्स फॉर रिप्रेजेंटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर यू आर जे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल आपकी सिद्रा के साथ मौजूद है जनाब इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। और चलिए जी यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, रेडी खेडी हो जाइए जरा खूबसूरती की दुनिया में कदम रखने के लिए और खूबसूरत बनने के लिए। और इसी के साथ साथ जरा अपने हाल चाल बताते जाइए। सो डियर लिसनर्स अंत कैफा हालत है, कैसे ही आपकी हालत है, उम्मीदन शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सुपरकूल मूड के साथ सुपरकूल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे, तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी ना वो खत्म हो चुकी है। फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मारी ली है। आपको पता है जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरी पूरी 3 बजे तक, यानी कि 2 घंटे हमारे पास मौजूद होने वाले। और 2 घंटों में हम करेंगे आप लोगों के साथ इन्नी शाली बातें, और इन्नी शाली बातों में जाहिर सी बात है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जिक्र तो होने ही वाला है। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए भाई। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करें, कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, तो उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करें वो क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। और कई मरतबा अगर आप किसी की स्किन देखें जो कि खराब हो चुकी हो या फिर उसे जरूरत हो कोई अच्छा सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के, तो आप उसे झट से बता सकेंगे भाई आपकी स्किन को नीड है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपकी स्किन के ऊपर किस तरह वर्क करते हैं इसके बारे में भी बातें की जाएंगी। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए, यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रही थी। ऐसी बहुत सारी आंटियां, अम्मियां, खालाएं, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी, यानी कि लंच बनाने के दौरान कभी अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुने लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्ती गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए। आपके होंठों पर 440 उल्की सुमाल आने का काम करेगी भाई जान ये सिद्रा। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की सुमाल लाते हैं। यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं और आगे से प्रोग्राम करेंगे जनाब एक बहुत ही प्यारे से कलाम के साथ। तो बहुत ही खूबसूरत सा कलाम जो कि हमारी लिस्ट में मौजूद है, तो आइए जरा पहले सबसे पहले हम कलाम को सुन लेते हैं। कलाम सुनने के बाद हम जैसे ही वापस दोबारा आप लोगों के पास मुखातिब होते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में क्या होने वाला है। और आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाते रहिए और खूबसूरतियाँ हासिल करते रहिए।

बेटे क्या बात है, आप सुन रहे हैं व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों की खूबसूरती के लिए इंतजाम, चाहे आप मर्द हज़रात हैं चाहे आप खवातीन हैं, आप सारे लोग ही डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है और डी स्किन फेस वॉश मिल रहा है। ये दो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, अगर आप परचेज करना चाहें तो बेशक कीजिए जनाब, इस्तेमाल कीजिए और जरा खूबसूरती की दुनिया में कदम रखते जाइए, क्योंकि ये सारे जो प्रोडक्ट्स आप लोगों को बताऊंगी ना, ये आप लोगों की खूबसूरती में इस तरह से काम करेंगे कि भाई आप कहेंगे हम पहले क्यों नहीं लगा रहे थे, हम पहले सिदराबाजी की बात क्यों नहीं मान रहे थे। तो खैर अभी भी कोई देर नहीं हुई है, बस आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर चले जाइए और वहां से मालूमात लीजिए और परचेज कीजिए। और अगर नहीं भी मिल रहे हैं तो उसका हल भी आप लोगों को बताऊंगी कि आप कैसे अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल करा सकते हैं। तो बिल्कुल बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन साथ साथ जो आज के प्रोग्राम में आप लोगों से टॉपिक पूछा जाएगा, सवाल पूछा जाएगा, तो उसकी जाने भी सर आ जाते हैं और यहाँ पर आप लोगों को तरीकेकार भी बताते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा किस तरह से बनने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले तो आज के प्रोग्राम का टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और सवाल कुछ इस तरह से होने वाला है कि आज आपने मुझे बताना है कि वो कौन सा जानवर है जो कोई आवाज नहीं निकाल सकता। हाँ जी, वैसे तो बेसिकली देखा जाए तो सारे जानवर ही आवाज निकाल रहे होते हैं, लेकिन एक ऐसा भी दुनिया में जानवर पाया जाता है जो कोई भी आवाज नहीं निकाल सकता। तो आप मुझे बताएं वो कौन सा जानवर होने वाला है। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, पहली मरतबा सुन रहे हैं, रोजाना सुनते हैं, या फिर आप घुड़ने वाले लिसनर्स हैं, यानी कि हमें चोरी चोरी चुपके चुपके से सुनने वाले लिसनर्स, तो ऐसा कीजिए अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK, सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8821 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब, आप आइए पेज के ऊपर, आपको हमारे

इंस्टाग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाती है जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे. तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए. बिल्कुल ना, पोस्ट को लाइक और शेयर करना भी आप ही लोगों का काम होता है. तो बस सिर्फ कमेंट कर देना काफी नहीं होता, पोस्ट को लाइक और शेयर भी कर दिया करें. ठीक है, ये तीनों काम कीजिए, फिर सुकून से बैठ जाइए और प्रोग्राम को एंजॉय करते रहिए. और इसी के साथ साथ मुझे बताइए वो कौन सा जानवर है जो कोई आवाज नहीं निकाल सकता. और इसी के साथ साथ 888 फेसबुक पर आप मुझे ज्वाइन करते जा रहे हैं, आपके मैसेजेस जो कि मुझे मिलते जा रहे हैं. बिल्कुल, यहाँ पर सबसे पहले हमें फरवा गुल ने ज्वाइन किया है, कहती है अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे. हाय, आपकी तबीयत कैसी है? होप यू आर फाइन एंड वेरी वेल. यस आई एम गुड, आप बताएं कैसी हैं. और कहती हैं कि आप ही अर्ज किया है, टूटा हुआ दिल सबको नजर नहीं आता मगर दर्द हर सांस में होता है. क्या बात है जी, बढ़िया हो गया. और फहीम शेख हमारे साथ मौजूद, कहते हैं कि आओ तारीख हमें गोली दस, तू तारीख हमें गोली दे, आओ किताब थी मिलंदस, तू ख्याल में गोली दे, आओ ख्वाब थी मिलंदस. माँ को हुसन जो शहजादो तो नाहा, पर तू गुलाब में गोली दे, आओ गुलाब थी मिलंदस. वाह वाह, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम अदर, कितनी अदर चालाए खुशायो सब चाक स्लेट कला मस्जिद डबी अजाम यची वयासी. प्रोग्राम तो लाजवाब आए हमेशा जिया तमाम वांगे. थैंक यू वेरी मच, प्यारा भा तुम मोहब्बत वन प्रोग्राम बुध पाया. आई पोस्ट के लाइक एंड शेयर कहना हलो. और कहते अदा तो अच्छी अच्छी हो, तुम अच्छी स्टार्टिंग में गलत अफवाहों न फैलाइंदा कर अला सही डोर दींदो अव. अखलाक भाई मेरे साथ मौजूद है प्रोग्राम में. हेलो अखलाक भाई, हजार खान जतोई भाई मेरे साथ मौजूद है. वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू यू. और हमारे साथ ही नजर मोहम्मद भट्टी भाई, वालेकुम अस्सलाम एंड मौला अली सलाम अदर. आप हमें सुन रहे हैं कहाँ से? नजर मोहम्मद भट्टी भाई मटियारी से सुन रहे हैं. ओके, कहते हैं बेस्ट आपकी आवाज. अरे भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी बेस्ट है, आप परचेज कीजिए, मटियारी में आपको मिल जाएगी. भाई हमें सुन रहे हैं मोहम्मद जमान भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया, वेलकम. कहते हैं साजिद अली, कहते हैं कि दिल अमीर था पर मुकद्दर गरीब था, हम अच्छे थे लेकिन बुरा नसीब था, कोशिश करके भी कुछ ना कर सके हम, घर भी जलता रहा और समंदर भी करीब था. कैफ हाल प्रोग्राम शामिल आज को वेलकम कहते हैं, थैंक यू के साथ. और रशीद कोसो भाई हमें सुन रहे हैं हैदराबाद से, वालेकुम अस्सलाम रशीद भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक है. और मोहम्मद नून और अबू हनीफ अलबलोची लिखते हैं कि कैसा हो कि हम दोनों मिलकर सितारों से घिरे हुए चांद को देखे, ये बात बताने में कामयाब हो जाऊं, तुम्हारा चेहरा इस चांद से कई गुना ज्यादा खूबसूरत है. ठीक है, चांद खूबसूरत है मगर आप जितना हसीन थोड़ी है. क्या बात है, बहुत बढ़िया, शुक्रिया, थैंक यू. डी स्किन ब्यूटी क्रीम का कमाल है, वैसे ये आप भी इस्तेमाल कीजिए, आप भी खूबसूरत हो जाइए. फैसल अहमद आनी हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम. अली रज़ा लगारी हमें सुन रहे, कहते हैं गोठ जाम खान लगारी से अली रज़ा लगारी, वालेकुम अस्सलाम. सिस्टर आप कैसी हैं? शो तमाम नाइस है. सॉन्ग चोड़ी है जो चंड खां चिटो आए मुंजो पिरी. अच्छा मां दिसां थी, बिल्कुल यो तां जो गानो हलाइण जी कोशिश कना सी. आई तवां डेडिकेशन सेंड कई आहे अज़र लगारी, आकिब लगारी, इमाम बख्श खोखर, आरजी गुलाम मुस्तफा टालपुर, खालिक लाशारी, अल्लाह बचायो. और सिस्टर सिद्रा आपकी डी स्किन ब्यूटी क्रीम हम यूज कर रहे हैं, तमाम अच्छी है सिस्टर, थैंक्स. ओके वेरी नाइस, डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप सारे लोग ही यूज कर सकते हैं जैसे भाई देखें. अली रजा भाई ने बताया कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम बहुत ही अच्छी क्रीम है, तो आप सारे इस्तेमाल कीजिए, अपने करीबी जनरल स्टोर पर जाइए, वहां से मालूम लीजिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम कहाँ कहाँ पर अवेलेबल हो चुकी है. अच्छा फहीम भाई कहते हैं कि इतनी सारी बातें ये कितनी सारी होती, जितनी मैं प्रोग्राम में करती हूँ उनको इतनी सारी बातें बोलते. हिदायतुल्लाह कहते हैं कि मेरे हाथों की लकीरों में ये ऐब है मोहसिन, मैं जैसे हाथ मिला लूं वो मेरा नहीं रहता. वालेकुम अस्सलाम मुस्कान, ये कॉपी सॉन्ग ये शमन का बिल्कुल इनके हलाए वठूं साथ, थैंक यू तवां सां सगड़ मौजूद आयो. हनीफ बिरोही भाई हमें सुन रहे हैं, हाय. मौजम चांदियों में सुन रहे हैं, ओके मौजम भाई आपको भी वेलकम हो गया. अर्ज मोहम्मद गोला भाई हमें सुन रहे हैं, जेकब आवाज से प्रोग्राम पसंद है आपको, थैंक यू. बतूल आ चुकी है, कहती है अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, आपकी गुस्से वाली दोस्त आई एम बतूल फ्रॉम मटियारी से आप हमारा शो सुन रही, कहती कल फिर सॉन्ग नहीं लगाया आपने, दिल भी नहीं करता आपसे गुस्सा करूं क्योंकि आपकी आवाज हमें और पूरे घर वालों को बहुत मीठी लगती है. सॉन्ग प्लीज मां दिसां थी, गानो तां थोड़ो मुखे समझणो पवंदो छो त इन जो जेको तव्हां लिखियो आहे न, मां समझी वठां थी, अगर मुखे मिलियो त तव्हां जे लाइ हलाए वठूं था. ठीक आहे, न त कोशिश कंदा कयो, अगर कोई ॾुखियो गानो फरमाइश कयो त हुन जी लिंक मूंखे काइंडली तव्हां शेयर करे छॾींदा कयो. चलो पोइ बि तव्हांजी फरमाइशनि खे हलाइण जी फुल कोशिश कयूं था. ॿुधायो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूस जेको आहे न तव्हांजे खूबसूरती में चार चंड लॻाइण वारो अथव. स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल तव्हां हर कोई माण्हू करे सघे थो, चाहे तव्हां मर्द हज़रात आहियो, चाहे तव्हां ख़वातीन आहियो,
एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम चिलाए मोहम्मद जमान भाई कहते हैं हमारे रंग डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने के बाद पता चलेंगे बिल्कुल जी तवान जो रंग जो आने दफा निखिरजी इंदो आई तवा एडा सोना थी ना मानू तांका बार बार पुछना लगातार पुछना बुधायो त या खूबसूरती तांके नी काडा मिली आ है आई तवा उनन के बुधायो जो बाबा ही डी

0: स्किन ब्यूटी क्रीम जो कमाला है। सिराज अहमद जतोई भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, सऊदी अरबिया से आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया के साथ आपको वेलकम कहा जाता है। इसी के साथ साथ आप लोग फीडबैक जरा शेयर करते जाइए, डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में जरा मुझे बताते जाइए, कौन कौन इस्तेमाल कर रहा है, कहाँ कहाँ पर अभी अवेलेबल कराने बाकी रहती है और कहाँ कहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल हो चुके हैं। तो आप भी बातें कीजिए, हम भी बातें करेंगे, ये सिलसिला पूरे 3 बजे तक जारी और सारी रहेगा। आप जरा पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए और हमारा साथ देते जाइए। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लगाइए और खूबसूरत हो जाइए।
1: It's 1:30.
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है, GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है, इसीलिए बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो, आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें, शराइत और जवाबित लागू हैं।
4: धर माशुम वरकोटी वरकोटी कदमुना दयो निवी दुनिया पलोर रवानवी, खुदा पोलियो रंज दा कदमुना द्रवले हुमशी, नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम पमहाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई, अखपल माशुमानो ता द पोलियो द मखनिवी द्व सास्की वरकवल महेरवई, जकच हम द सास्की द माशुमानो द बदन दिफाई ताकत ज्यातवी औ द हगी द खूबुन वलवत वजरी मुमी। पोलियो यानी मुस्तकिल माजूरी।
5: छा अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी, हाने पेंजी स्किन के दियो एक नओ गिलो, पेश आहे व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट ए ग्लोइंग, इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक, रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट, हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान। व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी, बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम सा इस्तेमाल करियो व्हाइट एश ब्यूटी सोप। व्हाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज, अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
6: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
7: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल,
6: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारी जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
7: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी,
6: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियन, कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे, आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी, आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली, वधिक मालूमात लाए 2347-3141-230।
6: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी, मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी, मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी।

0: 63.
1: के शेखिस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जो पक्यू छिटू लगरा लाए खुशखबरी छा अमा चायो था अमा जे घरन जो छिटू पक्यू हुजन त के शेखिस्तन ते 50 साल गारंटी सा छिटू लगरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ए सस्ते में सस्ती छित लगरा लाए राबतो कंदा खुदा बख्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4

जदीद माइक्रो बीट्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिंडीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सखरन मेहरापुर माथिली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से और नूरियाबाद वाले भी हमारे साथ मौजूद है और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप लोगों के साथ साथ हैं जनाब। यहाँ पर जितने भी खूबसूरत से लोग हमारे साथ मौजूद है उन तमाम लोगों को वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। ओके जी, इसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रोग्राम में आप लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बातें की जाती हैं और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बातें इसलिए की जाती हैं ताकि आप लोगों को हम बता पाए कि भाई डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों की खूबसूरती के लिए क्यों जरूरी है। क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में सबसे पहली बात कि आप लोगों के लिए जनाब इतना जबरदस्त सा फार्मूला एड किया गया है जिसे लगाने के बाद आप लोगों को ये एहसास हो जाएगा कि डी स्किन ब्यूटी की खूबसूरती को बढ़ाने का काम कर रही है बल्कि आपकी हमेशा के लिए लॉक भी कर रही है, हमेशा के लिए आपकी खूबसूरती की हिफाजत भी कर रही है और आप बनते जाएंगे हसीन खूबसूरत और प्यारे प्यारे। तो चाहे आप मर्द हस्त चाहे आप खवातीन हर कोई डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर सकता है और आपकी स्किन किसी भी टोन की है हर स्किन के ऊपर आप डी स्किन का ब्यूटी क्रीम जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये बात आप लोगों को बता दे चलूं जरा जो कि मुझे बड़ी कमाल की लगती है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना ये एक मेडिकेटेड फार्मूला है यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम को उन तमाम डॉक्टर्स ने मिलकर तैयार किया है जो कि आपकी स्किन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। तो जो आपकी स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं बिल्कुल उन्होंने मिलकर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को तैयार किया गया है तो उसका फार्मूला जो है ना वो मेडिकेटेड फार्मूला है तो ये भी टेंशन दूर हो गई कि भाई आप अपनी सेंसिटिव स्किन के ऊपर लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे। तो हर स्किन के ऊपर आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं चाहे आप मर्द हजरात हैं चाहे आप खवातीन हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए और हमेशा के लिए खूबसूरत हो जाइए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में ये बात भी आप लोगों के साथ शेयर करती चलूं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना ये 2-in-1 फार्मूला है। 2-in-1 फार्मूला मतलब ये कि भाई ये एक नाइट क्रीम तो है, बाजार नाइट क्रीम है लेकिन इसका जो रिजल्ट आपको मिलेगा ना वो ऐसा मिलेगा जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया हो, आपने कोई महंगी सी स्किन ट्रीटमेंट ले ली हो। क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन ई बीट्स हैं, माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन है, अल्फा आर्बुटीन है, कॉजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें ऐड की गई हैं जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम कुल मिलाकर आप लोगों की खूबसूरती में 4 चांद लगाने का काम करते हैं। और ये जो विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स का मैं जिक्र करती हूँ ना इसका ये काम होता है कि भाई पूरे पाकिस्तान में आप जरा रिसर्च करेंगे या फिर आप जानेंगे ना तो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 से 3 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके अंदर विटामिन ई बीट्स और माइक्रोबीट्स ऐड किए गए हैं। और ये जो विटामिन ई बीट्स और माइक्रोबीट्स होते हैं ना इनका ये काम होता है कि भाई अगर आपने देखा होगा ना बहुत सी खवातीन जो कि महंगे महंगे फेशियल्स कराती हैं तो उनको जो रिजल्ट्स मिलते हैं ना वो इसी वजह से मिलते हैं क्योंकि उनके जो फेशियल के अंदर विटामिन ई बीट्स और माइक्रोबीट्स फार्मुलेशन की एडिशन की गई होती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि भाई आपके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं कि आप महंगे से फेशियल कराएं या फिर फेशियल कराने में टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाता है, आप चाहते हैं बस कोई ऐसा सा प्रोडक्ट हमें बता दे जो हम लगाएं और हमें चुटकियों में निखार मिल जाए तो बिल्कुल आपके लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम हाजिर खिदमत है जनाब। आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगाने का काम करती है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप हर टाइम लगा सकते हैं यानी कि आप ऐसा है कि आप सारे स्किन के ऊपर इस्तेमाल करें, सारी स्किन के मतलब जो आपकी स्किन सेंसिटिव हो गई, कॉम्बिनेशन टाइप हो गई, ऑयली हो गई, ड्राई हो गई, नॉर्मल हो गई तो हर स्किन के ऊपर आप आराम से डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर सकते हैं। और डी स्किन का यूज करने के फौरन बाद ही जो है ना आप लोगों को रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं यानी कि सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से आपको अच्छे खासे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको अच्छा सा रिजल्ट मिल जाए अच्छे से मुनासिब से पैसों के अंदर तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज जरूर करके देखिएगा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल जो है ना वो आप लोगों को जरूर बताऊंगी कि आपने कैसे करना है लेकिन डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन का फेस वॉश भी मिल रहा है तो अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करें तो साथ में डी स्किन फेस वॉश तो लाजमी लीजिए।

क्योंकि डीस्किन का जो फेस वॉश है ना, ये भाई इतना कमाल का एक फेस वॉश तैयार किया गया है जिसके अंदर हाइलोरोनिक एसिड सीरम का जो है ना वो एडिशन की गई है, और हाइलोरोनिक सीरम एडम जो है ना इसके अंदर, तो उसका ये फायदा आपको मिलेगा कि भाई आपकी स्किन जो है वो हमेशा मॉइस्चराइज रहेगी, आपकी स्किन डीपली क्लीन रहेगी, आपकी स्किन जो है ना वो हमेशा ग्लो करती रहेगी। तो अगर आप भी कोई अच्छा सा फेस वॉश ढूंढ रहे हैं, कोई अच्छा सा फेस वॉश इस्तेमाल करने वाले हैं, तो डी स्किन फेस वॉश का यूज आप लोग जरूर करके देखिएगा। और डी स्किन का फेस वॉश जो है ना, ये भाई आपकी खूबसूरती के लिए जो है ना वो बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। आपकी स्किन के अंदर तक जाकर आपके चेहरे को निखारता है, आपके चेहरे की स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, और आप अपनी डेली रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर डी स्किन का फेस वॉश एड कर लीजिए। मतलब समझ लीजिए कि आपकी जो आधी जिंदगी की प्रॉब्लम है ना स्किन से रिलेटेड, वो सारी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आपके लिए इतना अच्छा प्रोडक्ट हमने तैयार किया है जो कि लगाते ही साथ ही आपकी खूबसूरती में आए हाय क्या ही इजाफा आ जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि भाई हमारे करीबी जनरल स्टोर्स पर ये तमाम प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे, हम क्या कर सकते हैं, कैसे अवेलेबल करा सकते हैं, कहां से जाकर परचेज कर सकते हैं, तो इसका हल भी हमारे पास मौजूद है। आपने कुछ ज्यादा नहीं करना, बस ऐसा कीजिए जो नंबर अभी आप लोगों को बताऊंगी ना, उन नंबर्स के ऊपर रابطہ कीजिए, और रابطہ करने के फौरन बाद ही आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो या फिर डी स्किन फेस वॉश हो, वो अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो डायल कीजिए 03125025907 बुड़ी 312 50 970 एंड योर नंबर आहे 03273834309 बुड़ी 332 73 84 309 ही नंबर साइन बाबा नथी ता सगो था बे ते मैसेज करे सगो था आई हिक न हिक त तवां के जरूर रिस्पांस दिंदो ही तमा उन के बुधायो त किथे डी स्किन ब्यूटी क्रीम आई किथे डी स्किन जो फेस वॉश अवेलेबल अन्या ती कोन थियो आहे त हु अवेलेबल कराए छडींदा आई तवां जे लाइ आसानी थी वेंदी पो ता वणियो बस ता वठी आई आराम सा अचो इस्तेमाल कयो आई पांजे खूबसूरती जो ख्याल रखो। तो चाहे आप मर्द हज़रात हैं, चाहे आप ख्वातीन हैं, हर कोई डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर सकता है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम से फायदा हासिल कर सकता है, क्योंकि भाई इतना कमाल का प्रोडक्ट जब आपके पास मौजूद है तो उसे हाथ से मत जाने दीजिए, इस्तेमाल करके देखिए, यकीनन आपको बहुत अच्छे वाले रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए, अपनी खूबसूरती का ख्याल रखिए और हमेशा के लिए हसीन बनते जाइए। और हमें बताइए कितने सारे लोग हैं जिन्होंने डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर लिया है और कहां कहां पर अभी अवेलेबल कराने बाकी है, ये भी आप मेरे साथ शेयर कीजिए। बाकी आप लोगों को वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है, आपकी मोहब्बत और समात और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। आप लोग पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते जाइए। और यहां पर आज मैंने आप लोगों से सवाल पूछ लिया प्रोग्राम के अंदर कि वो कौन सा जानवर है जो कोई आवाज नहीं निकाल सकता। हाँ जी बिल्कुल, आपने सही सुना, वो कौन सा जानवर है जो कोई भी आवाज नहीं निकाल सकता। आपने इस सवाल का जवाब देना है और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाना है। अगर आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं तो जनाब क्या बात है, ये आपकी मोहब्बतें होती हैं। बाकी अगर आप हमारी पोस्ट को जरा लाइक और शेयर कर देते हैं तो ये बहुत बल वाली मेहरबानियां हो जाती हैं। तो पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए और मुझे बताइए आप कहां कहां से हमें सुन रहे हैं और कहां कहां पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल करानी बाकी है मेरी जान। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए, खूबसूरतियों को जरा वेलकम कीजिए और हमेशा के लिए हसीन और खूबसूरत होते जाइए। आज आप लोगों के ऐसे कमेंट्स की तो बारिश हो रही है भाई, बारिश हो रही है क्या बात है। मैं जरा कोशिश करूंगी जल्दी से कमेंट्स पढ़ते जाएं ताकि ऐसा हो कि तकरीबन सब लोगों के कमेंट्स शामिल प्रोग्राम होते रहें। और यहां पर हाफिज गुलाम मोहम्मद सांभल भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं प्यारे भाई को, आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आता है, कहते हैं प्रोग्राम के बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छे रखती हैं आप और पसंद आते हैं, मेरी तरफ से आपकी पूरी टीम को लिसनर्स को सलाम। वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई, आपको वेलकम कहा जाता है। और अलीशा क्वीन हमारे साथ है, क्वीन कहती हैं आपकी आवाज बहुत अच्छी है, थैंक यू वेरी मच अलीशा क्वीन। और उनके अलावा सिराज अहमद जतोई हमारे साथ हैं, आपको भी वेलकम कहते हैं। और मोहम्मद जमान भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। हिदायतुल्लाह कहते हैं कि कौन कहता है पाकिस्तानी ड्रामे, बस उस दिन मैंने इसी के बारे में बात कर दी थी। छोड़ दें इस चीज को। अच्छा दर्दी दिल हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम गुड आफ्टरनून माय फेवरेट आज चंदा जानी, कैसी हो, मैं ठीक हूँ तुम बताओ कैसी हो। और निदिरी कहती है कि हेलो मेरी प्यारी जानी पानी, शोना मोना क्यूटी स्वीटी ओपा बाबू जाना जाना शोना और अला शाहजा। सीधा सीधा हेलो बोलो ना। और फहीम भाई आपने टॉपिक का जवाब दिया है, ठीक है जी बढ़िया हो गया। साजिद अली हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। निदली कहती है कि आज इतनी पोइट्री सेंड की है सबने, चलो मैं भी करती हूँ, करो करो बाबा करो करो। और सहारो अली रिंद बलोच हमारे साथ है, भाईजान आपको भी वेलकम हो गया। अलीशा कहती है आपकी आवाज बहुत अच्छी है, थैंक यू वेरी मच अलीशा।

और निदली कहती हैं कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में आकर हमें ये सिखा जाते हैं कि हर किसी से दिल लगाना जरूरी नहीं होता। कभी कभी इंसान सिर्फ ये चाहता है कि कोई उसे समझ ले, छोड़ कर ना जाए। खामोश दर्द और गहरी यादें, क्या बातें। अच्छा, हाफिज गुलाम अमन सांबल भाई लिखते हैं कि रिश्ते और मौसम दोनों एक जैसे होते हैं, कभी हद से ज्यादा अच्छे और कभी बर्दाश्त से बाहर। फर्क बस इतना है कि मौसम जिस्म को तकलीफ देता है और रिश्ते रूह को। अच्छा, हजार भाई कहते हैं कि सिस्टर आपका शो सुनकर दिल को सुकून मिल जाता है, अल्लाह जाय विधा। अलीशा कहती हैं कि जरूरत ई न पई कंहिंखे आज़माइण जी, वक्त सां गॾु सभई पंहिंजा रंग ॾेखारे विया। हक़ीक़त भाई सोणो मुंहिंजो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज़ करे थो, तव्हां कयो पिया, कोन ॿुधायो त सही ख़बर त पवे। फरवा गुल तव्हांजो मोहबत प्रोग्राम ॿुधो पिया। फही भाई कहते हैं जब तक आप शो को लाइक नहीं करती तब तक हमें शो, भाई थोड़ा तो सबर कर लिया करें, प्रोग्राम स्टार्ट करने दिया करें, क्या मतलब साना पटियामा। अच्छा, दर्दे दिल कहती हैं कि वो मकाम शिकवे का होता है, वही मकाम शुक्र का भी होता है, लेकिन हम उस मकाम पर शिकवा जल्दी और शुक्र देर से अदा करते हैं, हर बात में खैर ढूंढा करें और अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत अपनाएं। बिल्कुल जी, आपने सही कहा। मुख्तार अली लाशारी भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। नजीर खोसो भाई हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। निदड़ी लिखती है कि ओ माई हबीबी, माई हयाती, माई उमरी, अब इसका मतलब सुनो। माई हबीबी मतलब मेरा प्यार, माई हयाती मतलब मेरी जिंदगी, माई उमरी मतलब हमेशा उसे प्यार करेंगे जैसे प्यार करते हैं।

भाई गरीब खे बिल्कुल साव आहे पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल भी कयो बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजे खूबसूरती में चार चंड लगाने जो कम तो तव्हां बाबा पाणे ऐं डी चिकनो बणाए छॾींदी अगर तव्हां पंहिंजी स्किन सां रिलेटेड परेशान आहियो तव्हांखे ख़बर नथी पए त कहिड़ो प्रोडक्ट लॻाइण घुर्जे कहिड़ो प्रोडक्ट असांजी स्किन जे लाइ बहितर रहंदो त तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो ट्राए करे ॾिसो बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांखे सफ़ा वी आई पी बणाए छॾींदी ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी इहा ॻाल्हि मूंखे तमामु घणी पसंदि आहे त डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिकु मेडिकेटेड फार्मूलो आहे यानी की कंहिंजी बि स्किन खे कोई बि नुक़सान न पहुचंदो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां आराम सां हर स्किन जे मथां अप्लाई करे सघो था ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम मर्द आहियो ख़वातीन आहियो हर कोई लॻाए सघे थो सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻायो बाबा ऐं सुहिणा सुहिणा थी वञो।

0: अच्छा भाई, सबने टॉपिक का जवाब बता दिया है, क्या बात है जी, अच्छी बात है, अच्छी बात है, होशियार हो चुके हैं। इंतजार भाई हमारे साथ है, इंतजार भाई वालेकुम अस्सलाम, आप भी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। और नाजिक अली हमें सुन रहे हैं, कहते हैं गुड गुड, थैंक यू वेरी मच। अच्छा तुम्हारा प्रोग्राम जो अच्छा टॉपिक है फॉलो करो, सही सही वासु भाई हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम वासु भाई, ठीक ठाक है, खुशबाश। अच्छा जैन अली कहते हैं कि नहीं मिला है कोई तुस्सा आज तक मुझको, फिर ये सितम अलग है कि मिला तो तू भी नहीं। वाह वाह वाह वाह। अच्छा फहीम भाई कहते हैं कि दादा ये है डी स्किन ब्यूटी क्रीम बहुत अच्छी है। वही तो ॾिसो मैडम इस्तेमाल कई त हुनखे पसंद अची वई, हाणे तव्हां बि इस्तेमाल कयो तव्हांखे बि ॾाढी पसंद अची वेंदी। अच्छा पोस्ट के लाइक कयो अथव, कोन कयो अथव या सिर्फ कमेंट जो बसकार हुआ है?
1: जेको जान के सामो ईंदो सांप तो सो घरे मोटी न वेंदो।
0: जाई बुधा कसम थी।

लश पश सोनो मुंजो आई सफा लश सोनो मुंजो आई सोनो लश आहे बाबा छो तो सोनो जो आयो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे पयो ई तमा भी अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे पयो त तमा भी लश पश थी वेंदा सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल ता के सफा ये सोनो खूबसूरत ए प्यारो प्यारो बनाए सडिंदो डी स्किन ब्यूटी क्रीम ता है पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम सा कर ता के डी स्किन जो फेस वॉश भी मिल गयो है डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगायो डी स्किन जो फेस वॉश लगायो ए हमेशा जे ला सोना थी वेनो अच्छा कुछ मानु वरी यो सोचिना त बाबा असा क्रीम हणू था पर जदी सा क्रीम हणन वरी बंद करे छडिनासी त छा जेका खूबसूरती असांखे मिली आहे उहा ख़तम थी वेंदी अरे बाबा केरु थो चवे ख़तम थींदी जेका तव्हांखे मिली वई खूबसूरती तव्हांजी आहे तव्हां सां हमेशह गॾु रहंदी सो इन टेंशन जी वजह सां तव्हां अगरि प्रोडक्ट नथा इस्तेमाल कयो कयो बाबा कयो मेडिकेटेड फार्मूलो आहे कोई नुक़सान आहे तव्हां सिर्फ़ खूबसूरत थींदा ऐं खूबसूरती तव्हांजे दरमियान सिर्फ़ डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो फ़ासिलो आहे हुन फ़ासिले खे तय कयो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो।

जी ओके, फहद भाई कहते हैं कि हमने चेहरों को सच समझा, लोग किरदार छुपा कर मिलते हैं। वाह वाह वासा भाई, मोहब्बतों तांजो प्रोग्राम बुधो पया। नाज़े कहते हैं सिद्रा मेहरबानी करे असांखे पंहिंजी ओरिजिनल वॉइस में फैज़ाली जो कलाम बुधायो, दिल बच बच छा। अच्छा हाणे गाल समझ में आई एम नॉट सिंगर, यो तो मड़े ट्राडे जे करे गाईंदी है। अच्छा नजीबुल्ला बिरोही भाई वालेकुम अस्सलाम, मुगल उमरानी चाचा तमा एतरा कमेंट्स भला कया है नहीं, वे भी स्टिकर मोकलिया था, थोड़ा रहम कयो बाबा मानन ते। सालार अली हमें सुन रहे हैं, सालार को आपका अच्छा सालार बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ है। ओके हजार भाई कहते हैं कि तुम्हारी हर बात पर मुझे एतबार है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत प्यार है, मुश्किल वक्तों में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे हर कदम पर मेरा हाथ होगा, परेशान मत हो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारे हर ख्वाब को पूरा करेंगे मिलकर, तुम्हारा हौसला कभी टूटना नहीं चाहिए, मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ ये बात याद रखना। वाह सही वाह,

বাকি করবো বারবার। ऐं सोनो बि आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज़ कंदो आहे बाबा, तव्हां कहिड़ी दुनिया में आयो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो, तव्हां बि सोणा थी वेंदा। मीर मुमताज जतोई भाई तव्हां सां गॾु मौजूदु आहियो, वालेकुम अस्सलाम, तव्हांखे सॼो प्रोग्राम पसंदि आयो, सो मोहबतूं प्यारे सोणे भाजू। ज़ेन कहते हैं कि नहीं मिला है कोई तुसा आज तक मुझे। अच्छा यो वराए तव्हां करे छॾियो आहे कॉमेंट, ॾिसो इन वजह सां माण्हुनि जा कॉमेंट ऊपर भटी वेंदा आहिनि, हिकु हिकु मोकिलींदा कयो जीअं तव्हांजा सभु कॉमेंट शामिल प्रोग्राम थी सघनि। हिदायतुल्ला कहते हैं कि ओके अनवर भाई हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं बुझे बुझे से अजीब दिन है, ख्वाब है ना ख्याल कोई, ना मंजरों में कोई कशिश है, ना मौसमों में जमाल कोई, हम एक दूजे को अपनी अपनी अधूरी आंखों से देखते हैं, हमारे बरसों की चाहतों में उतर रहा है जवाल कोई। शायर छो था मोकलो भला बुधायो बुधायो डे स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कई कोई ना।

हांजी वेयो इते तहां स्टैंड या न्यूज़ ब्रेक जो ना कापो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हुना वापस से जल्दी मोटी तमारी चुंदा कारी ने एंजॉय ते बैठा हो जो हिया मनी ओ हिया मोडांती सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाइए और खूबसूरत हो जाइए।

0: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Hardiya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: G7 मुल्कन ईरान खां हुसैन जी हिमायत खत्म करण जो मुतालबो करे छड़े G7 मुल्कन ईरान खां हुसैन जी हिमायत खत्म करण जो मुतालबो करे छड़े गरियल कौमन में अमेरिका बरतानिया कैनेडा फ्रांस जर्मनी इटली और जापान के परदेही वजीरन जो इजलास हुसैन खां फौजी कार्रवाईयूं करण रोकण धमकियुनि जो सिलसिलो बंदि करण ऐं ॻाल्हियुनि तरफ़ वापसि अचण जो मुतालबो कयो वियो। ईरानी सदर मसूद पज़िशान गॾियल क़ौमुनि जे इजलास में शिरकत लाइ न्यूयॉर्क रवानो। परडे॒ही वज़ीर अब्बास इराक़ची पहिरें ई न्यूयॉर्क पहुतल। साफ़िन सां ॻाल्हाईंदे अब्बास इराक़ची चयो त गॾियल क़ौमूं आलमी अमुन ऐं सलामती जो तहफ़ुज़ करण में नाकाम थियूं आहिनि। आलमी बिरादरीअ ते एतमाद बि ख़तम थी चुको आहे।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम। यहां वहां GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
5: हर माशूम वरकोटी वरकोटी कदमुना दे यो नवी दुनिया पलोर रवानवी। खुद पोलियो रंज दा कदमुनो द्रवले हुमशी। नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम द पोलियो टीम जकच हुम दा असास की द माशुमानो द बदन दिफाई ताकत ज्यातवी औ द हगी द खूबुन वलवत वजरी मुमी। पोलियो यानी मुस्तकिल माजूरी।
6: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो।
7: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
7: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण। औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खु़शख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज़ गोरियूं

0: कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
1: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
1: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
1: ऐं हा, गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 03125252786।
1: जी हा, 3135525786।
4: GFM रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

अवाजी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन दीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

जी वापस आ चुके हैं दोबारा आप सुन रहे हैं CFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मादली नूरियाबाद और जनाब लाड़का व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों की खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी, और बहुत ज्यादा जरूरी मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि कई मरतबा ऐसा हो जाता है कि हम प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कौन से प्रोडक्ट लगाने चाहिए कौन से नहीं लगाने चाहिए। मार्केट जाते हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट देकर हमारा दिमागी घूम जाता है। तो अगर कुछ प्रोडक्ट्स मार्केट में ऐसे भी पाए जाते हैं जिनका इस्तेमाल करने के बाद हमारे चेहरे पर वही खूबसूरती हमें मिल सकती है जो कि हम हमेशा से हासिल करना चाहते थे, और उन्हीं प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी शामिल है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज आपके खूबसूरत से चेहरे पर चार चांद लाने का काम करता है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप सारे लोग ही कर सकते हैं और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप सारे लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब आपकी स्किन सेंसिटिव हो, ऑयली हो, ड्राई हो, नॉर्मल हो, कॉम्बिनेशन टाइप हो, मर्द हजरात है, खवातीन है, हर कोई डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर सकता है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि 2-in-1 फार्मूला है, यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम को आप नाइट क्रीम के तौर पर यूज तो कर सकते हैं लेकिन आपको जो रिजल्ट्स मिलने वाले हैं ना वो ऐसे मिलेंगे जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया हो, आपने कोई महंगी सी ट्रीटमेंट ले ली हो स्किन की। क्योंकि यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर जो है ना आप लोगों के लिए विटामिन ई बीट्स एड किए गए हैं, माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन है जनाब, अल्फा आर्बोटीन है, कॉजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें जो है ना सुनकर मतलब ऐसा आपको महसूस हो रहा होगा कि भाई ये प्रोडक्ट तो बड़ा ही महंगा होगा, तो कोई भी महंगा प्रोडक्ट नहीं है, ये मुनासिब सी कीमतों में आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। आप बस अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर चले जाइए, वहाँ से नाम लेकर तलब कीजिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए। और जो नंबर आपको बता रही हूँ प्रोग्राम के अंदर उसके ऊपर राबता करते रहिए ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी डी स्किन ब्यूटी फेस वॉश अवेलेबल हो सके। बिल्कुल जनाब, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना आपकी खूबसूरती को मजीद निखारने के लिए अपनी रोजमर्रा ब्यूटी के रूटीन में आप शामिल कर सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का जो एहसास होगा ना वो आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करता है, आपकी स्किन को नरम और खूबसूरत बना देगा, आपकी स्किन के रूटीन को मजीद खास बना देगा, आपके चेहरे पर जो है ना इतना अच्छा से निखार आ जाएगा, आपके चेहरे पर जो रिंकल्स हैं, फ्रेकल्स हैं, क्रेकल्स वगैरह हैं, आपके चेहरे पर ब्लैक हेड्स हैं, व्हाइट हेड्स हैं, एक्नी प्रॉब्लम है या जितनी भी ये प्रॉब्लम्स आपके चेहरे पर मौजूद होती है ना तमाम चीजों से देकर आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखती है और आपके चेहरे को हमेशा के लिए ब्यूटीफुल खूबसूरत और पुरकशिश बनाने का काम करती है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप सारे लोग ही कर सकते हैं, जी दिल खोल कर कीजिए और जरा अपनी खूबसूरती का ख्याल रखते जाइए। और साथ साथ अगर आप डी स्किन का फेस वॉश यूज करने वाले हैं तो क्या ही बात है जनाब, लाजमी आप ट्राई करके देखिएगा क्योंकि डी स्किन का जो फेस वॉश है ना इसकी क्या ही मैं बात बताऊँ आप लोगों को, इतना प्रीमियम क्वालिटी का ये फेस वॉश जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद ही कहेंगे कि भाई साहब ये क्या चीज बता दी है हमें, इतना प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद था और हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे थे। तो भाई अभी भी कोई देर नहीं हुई है, अभी भी आप जाकर परचेज कर सकते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश, लगाते रहिए और खूबसूरतियां हासिल करते रहिए। और हाँ, डायल करते रहिए 0332738430 9 बड़ी ट्रेस ओवर टी है

71 84 309 ऐं ॿियो नंबर आहे 03-12-50-50 भई मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ चला गया, नंबर दोबारा से नोट कीजिए 03-12-50-50-970 ही नंबर जेको आहे तव्हां डायल करे सघो था, नंबर ते तव्हां कॉल बि करे सघो था, तव्हां मैसेज बि करे सघो था ऐं हिननि खां मालूमात बि वठी सघो था बाबा प्राइस छा आहे या फिर किथां असां वञी परचेज करे सघूं था, असांखे क़रीबी जनरल स्टोर जो नालो ॿुधायो ऐं हिन खां अलावा जेका बि मालूमात तव्हांखे मतिलब असांजे प्रोग्राम मां न मिली सघी आहे त उहा तव्हां हिन नंबर ते राबितो करे पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स खे अवेलेबल बि कराए सघो था ऐं मालूमात बि हासिल करे सघो था। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश लगाते रहिए और खूबसूरतियां हासिल करते रहिए। ओके सो यहाँ पर जितने भी खूबसूरत से लोग हमारे साथ मौजूद हैं सभी को वेलकम एंड खुशामदीद कहते हैं। आपकी मोहब्बत और समात और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा कि आप मुझे बताइए वो कौन सा जानवर है जो कोई आवाज नहीं निकाल सकता। हाँ जी बिल्कुल आपने सही सुना, इस सवाल का आपने जवाब देना है और जरा मुझे बताना है कि ऐसे हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है और कितनी सारी प्यारी समाते हैं जो भाई हमारे प्रोग्राम को सुनते जा रहे हैं। और उसके अलावा सो जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है फेसबुक पर आप काइंडली पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते जाइए, बाकी आप लोगों के जो फीडबैक्स हैं वो शामिल प्रोग्राम रखे जाएंगे। और यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी हमारी लिसनर हमारे साथ मौजूद है, वो बड़ी भाई प्यार से और शौक से हमारा प्रोग्राम सुनती है और वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन का फेस वॉश भी यूज करती है और भाई एक खत्म हो जाता है तो वो जाकर दूसरा परचेज कराती है। और ये हमारे साथ मौजूद है आयशा मेमन। आयशा मेमन हमारी बहुत ही प्यारी और सुंदर सी लिसनर है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे आयशा, ऐसे ही हंसी मुस्कुराती रहे और बहुत बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। रेगुलर आप हमारी मतलब लिसनर भी हैं और आप हमारा प्रोडक्ट भी परचेज करती हैं। सो थैंक यू सो मच आयशा, आप हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम सुनती हैं, ढेर सारा प्यार आपके लिए और इसी के साथ साथ ऐसे ही प्रोग्राम को पसंद करती रहे और शामले प्रोग्राम होती रहे। अच्छा और हमारे साथ हमारी फजली भी प्रोग्राम में मौजूद है, फजली आपको भी वेलकम कहते हैं वालेकुम अस्सलाम के साथ। और साथ साथ ये हमारे साथ जी मौजूद है इमदाद जतोई, अब्दुल खालिक जतोई, मुबशर हुसैन जतोई, किफायतुल्ला जतोई, फारूक हैदर जतोई भाइयों को वेलकम कहते हैं। मीरपुर खास से अब्दुल्ला महर हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला महर भाईजान जो हैं ये भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो अब्दुल्ला भाईजान बहुत बढ़िया ऐसे ही इस्तेमाल करते रहिए। और शहर दादू खां, इमदाद अली जतोई, अब्दुल खालिक जतोई, मुबशर हुसैन जतोई और किफ़ायतुल्ला जतोई, फारूक हैदर जतोई भाउनजू मोबतुआ तव्हां प्रोग्राम ॿुधो पिया ऐं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल बि कयो पिया। ये हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम, वेलकम भाऊ। अब हेल्थ कैसी है? ठीक है, बस ये पूछने के लिए मैसेज किया, ख्याल रखिए अपना। ओके और दवाई टाइम से ले जी ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जयपाल भाई हमारे साथ मौजूद है और तबीयत काफी बेहतर है, बस ये थोड़ा गला अभी तक जरा अपनी जगह पर नहीं आया। और ये हमारे साथ मदद जी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, आप बताएं। हमारे साथ मौजूद है मायरा, आप भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर रही हैं, क्या बात है मायरा, ऐसे ही इस्तेमाल करती रही हैं और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल भी करा चुकी हैं, ये भी अच्छी बात है। मंजूर अली खास के गोठ दाबूचा खास केली लग झंडो मरी। ओके जी, झंडो मरी खां तव्हां असांजो प्रोग्राम ॿुधो पिया ऐं झंडो मरी में भी तव्हांखे डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिली सघनि था, बस तव्हां उतां थोरो मालूमात वठो, अगरि न बि मिलनि था त जेके तव्हांखे नंबर ॿुधाया आहिनि हुन नंबर ते तव्हां राबितो करे वठो ऐं पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन जो फेस वॉश अवेलेबल करायो। अच्छा इरशाद अली लगारी हमारे साथ हैं फ्रॉम मीरपुर खास कहते हैं नियर चूना फैक्ट्री, इंसान दुख नहीं देते इंसानों से वाबस्ता उम्मीदें दुख देती हैं। नाइस योर शो, थैंक यू वेरी मच। वैसे इरशाद भाई आपने क्या ही बात इरशाद कर दी है, बहुत बढ़िया थैंक यू, आप हमारे साथ हैं। अच्छा मुनव्वर अली मुगल भाई हमारे साथ कहते हैं सलाम बहना, उर्दू सिंधी गड तो अच्छी वयो ये बाबू भाई का स्टाइल है मुनव्वर भाई बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। अताउल्ला मरी हमारे साथ है विलेज रमजान मरी मीरपुर खास से। ओके क्या बात है, मीरपुर खास वाले लोगों का भाई क्या कहना, वो बड़े हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं, बड़ी मोहब्बतों से हमारा प्रोग्राम सुनते हैं। बाकी

माण्हू किथे आहे बाबा ॿुधायो हाल अहिवाल जो किथां किथां असांखे ॿुधो पिया ऐं तव्हांजे क़रीबी जनरल स्टोर ते दी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल थिया कोन मूंखे इहो बि ज़रूर ॿुधाइजो जे ख़बर पए दिलि जाए हुजे त बाबा हा तव्हां दी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो था

भाई रुसो न रुसो न रुठल भला नायो लगंदा खिल भोग मस्ती मजाक में रहंदा कयो जिंदगी दाढ़ी खूबसूरत आहे खूबसूरत तरीके से जिंदगी के एंजॉय कंदा कयो आई पाण के खूबसूरत बनायो बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो बतूल मेमन हमारे साथ ही बतूल बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ ही आपका गाना लगाते हैं जी मुझे मिल गया है आपका गाना और फहीम भाई कहते हैं हाँ थोड़ा थोड़ा शर्मीला है वाकई वाकई और नजर मोहम्मद भट्टी भाई आपका बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ है भाई हमें सुन रहे कहते हैं शो कहाँ से हो रहा है शो जी हो रहा है लाड़काना से बाकी हमारे साथ सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी मेहरापुर मातली नूरियाबाद ये सारे लोग मौजूद है सारे सिटीज में हमारा प्रोग्राम सुना जा रहा है तो सबको वेलकम हो गया और निदड़ी कहती है कि मतलब ये वॉइस तुम्हारी फेक है मतलब कुछ भी ऐसा भी नहीं है अच्छा हबीबुल्ला थेबू भाई वालेकुम अस्सलाम मुख्तियार लाशारी भाई के आज के सवाल का जवाब है ओके अली रजा लगारी भाई शमन का गाना सुनाते हैं थोड़ा सबर की और सर इरफान हमारे साथ मौजूद है महर इरफान सियाल साहब कहते हैं नाइस होस्टिंग मैम आज थैंक यू वेरी मच सर वेलकम सर अनवर भाई कहते हैं कि तुम्हारी आवाज़ में शायरी सुठी लगंदी आहे बाकी शायरी जा मौजू उहे कम त शायरन जो आहे असा केड़ा खुद शायर आयो बाकी शायर जाने शायरी जाने शायर जाने सही सही हाने गाल समझ में आई और हनीफ अलबलोची कहते हैं कि उसको फुर्सत ही नहीं वक्त निकाले मौसिन उसे होते हैं भला ऐसे होते हैं भला चाहने वाले मौसिन याद के दश्त में फटता हूँ मैं नंगे पाऊँ आके देख पाओं के छाले मौसिन क्या बात है मौसिन को बोलो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा ले और रमजान भाई वालेकुम अस्सलाम ठीक ठाक है प्रोग्राम में आपको वेलकम कहते हैं डी स्किन मेरे शहर में नहीं मिल रही है अवेलेबल करा दो आप भी गिफ्ट नहीं भेजती रमजान मरी आपका भाई रमजान भाई आप कहाँ से हमें सुन रहे हैं बताएं तो आपके करीबी जनरल स्टोर पर हम डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करा देते हैं ठीक है अच्छा मुजाहिद मलिक कहते हैं सिडो मेरी MP3 खराब हो गई है मैं आपका शो मोबाइल पे सुन रहा हूँ प्लीज आप दुआ करें MP3 बन जाए ताकि मैं आपको लंबी आवाज में सुनूं कम आवाज में मजा नहीं आता आपके शो का जी जी आपकी MP3 बन जाएगी और बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं अच्छा रुखसार मरी भी हमें सुन रही है रुखसार मरी बहुत शुक्रिया थैंक यू आप हमारे साथ हैं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर रही है नहीं बताइएगा अली दिना भाई हमें कश्मीर से सुन रहे हैं और मुलायर अमीर बख्श हमें सुन रहे हैं

ओके अॼु मां कोशिश कई आहे पंहिंजी प्लेलिस्ट जेका आहे सिंधी गाननि सां ज़रा भरी वञे सो सिंधी गाना अॼु जी प्लेलिस्ट में ॿुधंदासीं ख़बरदार के उर्दू गाने जी फरमाइश कई

अरे सोन त खैर तव्हां वठो जॾहिं पर तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठो बाबा हुनखे चवेसि त बाबा हाणे जो हाणे आणे ॾे मूंखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु करणु स्टार्ट कयो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजे ख़ूबसूरती जे लाइ सफ़ा घणी फ़ाइदेमंद आहे. सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज़ करे तव्हां सफ़ा सोणा सोणा थी वेंदा ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे तव्हां हर कोई इस्तेमालु करे सघो था, यानी मर्द हज़रात बि लॻाए सघो था ऐं ख़वातीन बि लॻाए सघो था. सो लॻायो बाबा ऐं पंहिंजे चहिरे खे चमकायो ऐं सोणा सोणा थी वञो. अच्छा माण्हू छो चवंदा त लाड़काणे जो सोन भलो न आहे हूंदो. मां इलाही माण्हुनि खां ॿुधो आहे चवंदा लाड़काणे जो सोन भलो न आहे हूंदो. हा वाक़ई हक़ीक़त में ॿुधाए त मूंखे ख़बर पवे.

बिल्कुल जी, पोस्ट को लाइक और शेयर करती रहिए और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती रहिए। सालार कहते हैं योर प्रोग्राम बेस्ट, थैंक यू वेरी मच सालार। परवा को भी प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया।

अच्छा दर्दी तो लिखती है कि एक ही नजर में आप हमारे मेहमान बन गए, दो चार बातें क्या कर ली, सारा जहां बन गए, पास रहकर भी लोग हमें अपना ना बना पाए और दूर रहकर भी आप हमारी जान बन गए। अल्लाह रे थैंक यू साजिद अली भाई के थे हर सवाल जो जवाब। जी बिल्कुल भाई साहब आप सही कह रहे हैं। मुझे बताइए डेज स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल किया या अभी सिर्फ। अमानुल्लाह महर हमारे साथ ही, अमानुल्लाह महर भाई वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं। अच्छा अलीशा कहती है थरू शाह से मेरा भाई सदाम हुसैन चांदियो आपका शो सुन रहा है। ओके आप दोनों को वेलकम कहते हैं। दर्दे दिल भी आप टॉपिक का जवाब दे चुकी हैं। ओके जी ओके तालिब मरी भाई हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया तालिब भाई आपको वेलकम कहते हैं। ओके जी रहमान अली शंपानी भाई वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं ठीक ठाक हैं। नजर मोहम्मद भट्टी भाई वालेकुम अस्सलाम, मटियारी का डांस ने प्रोग्राम बुध पया। अच्छा अदो चाहे तो अदा सर खालिद जी शादी आहे छा अड़ा गाना प्ले कया थी शादी आ तो घोट नजर को हाँ चाचे जी शादी कराई था भला इन में शायद एसन अली बुक्टी भाई हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया भाई आपको वेलकम हो गया। रशीद कोसो भाई तवांगे प्रोग्राम वणे पयो थैंक यू। हजार भाई कहते सिस्टर में आपका शो शारजा से सुन रहा हूँ, जबरदस्त शो, थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई। निधरी कहती है कि सिंधी सॉन्ग्स के साथ वो सॉन्ग भी लगा दो, हाजिर हाजिर। रशीद भाई कहते हैं कि हैदराबाद में क्रीम मिल रही है और हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ओके क्रीम का नाम तो बताएं, कौन सी क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं।

0: शॉर्ट कमर्शियल बात सुनती रहिए और हमारा साथी जी पूरी पूरी 3 बजे तक मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ। रितेश एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट लगाइए और खूबसूरत हो जाइए।
1: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by.
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए।
3: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ।

0: आवाज की डोर से बंधा हुआ।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
3: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है। इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 111-475-264 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत और जवाबित लागू हैं।
4: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जे तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं। हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राति जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम।
5: ख़ूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे खत्म ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
6: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ 2 मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन 2 ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है। हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के 2 कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
7: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
8: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
7: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
8: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
7: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
8: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
7: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ ख़ुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 वॻे घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं।

0: प्रीकास्ट आरसीसी घरन जो पकियो छितू लगरा लाए खुश खबर छामा 50 साल गारंटी सा छितू लगरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ए सस्ते में सस्ती छित लगरा लाए राबतो कंदा खुदा बख्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
1: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4
2: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
0: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
0: ऐं हां गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
2: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राबतो कंदा
2: 03132525786
0: जी हां 2315525786
2: GFM रेडियो नेटवर्क
0: सिंध जो आवाज़।

0: जेकॾहिं तव्हां खे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0326-36-36-878 ऐं 0312-34-01-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
1: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पेंजे बारन के पोलियो खां बचाव जा कतरा जरूर पियारियो, छो त ये कतरा बारन में मुदाफ़ती ताकत के वधाइन था ऐं इनन जे ख्वाबन के उडाम ॾियन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माज़ूरी।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: हर माशूम वरकोटी वरकोटी कदमुना दयो नवी दुनिया पलोर रवानवी, खुदा पोलियो रंज दा कदमुनो द्रवले हुमशी। नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम पमहाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई, अखबल माशुमानो ता द पोलियो द मखनीवी दो सास की वरकवल महेरवई। जकच हम दग सास की द माशुमानो द बदन दिफाई ता कज्यातवी और द हगी द खूबुन वलवत वजरी मुमी। पोलियो यानी मुस्तकिला माजूरी।

बिल्कुल जी, दिल चए थी तू जो नालो मां सुकून रखी छॾियां। बाकी कुझु माण्हू असांजी ज़िंदगी में हूंदा आहिनि जेके असांजी ज़िंदगी में सुकून जो कमु कंदा आहिनि। चलो अगरि तव्हांजी लाइफ में बि कोई अहिड़ो मौजूदु आहे त हुनजो क़दुरु कयो ऐं हुनखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम गिफ्ट कयो। बिल्कुल सुना वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं मुझे बताइए जरा, ताकि मुझे पता चले कि भाई जितने भी ये खूबसूरत लोग हमारे आस पास घूम रहे हैं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये चीज भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना भाई, खूबसूरती हर किसी की ख्वाहिश होती है, लेकिन खूबसूरती के साथ साथ अपनी जिल्द का मुनासिब ख्याल रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप अपनी रोजमर्रा की ब्यूटी के रूटीन में एक खूबसूरत सा इजाफा करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लीजिए और ये क्रीम आपकी रोजमर्रा स्किन केयर को मजीद आसान और खूबसूरत बनाने के लिए बेहतरीन इंतखाब साबित हो सकता है। आपकी जल्द को नरम और मॉइस्चराइज रखने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है जनाब। और अपनी स्किन केयर को ना तवज्जो देना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि कई मरतबा जब हम स्किन का ख्याल नहीं रख रहे होते तो उसी वजह से हमारी स्किन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और जब आपकी स्किन खराब हो चुकी होती है और बहुत ज्यादा आपके चेहरे पर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तब जाकर आपको रियलाइज होता है कि भाई अब हमें चेहरे का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन कैसे रखें वो बहुत ज्यादा थोड़ा सा मुश्किल सा कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक बन जाता है। तो अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करने वाले हैं तो लाजमी कीजिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये मेडिकेटेड फार्मूला है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम को जो है ना स्किन से रिलेटेड जितने डॉक्टर्स होते हैं ना उन्होंने मिलकर तैयार किया है, तो कोई भी साइड इफेक्ट का इशू ही नहीं होगा। आपकी स्किन किसी भी टोन की ही आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंसिटिव स्किन वाले लोग भी दिल खोलकर इस्तेमाल कर सकते हैं। मर्द हजरात हैं, खवातीन हैं, हर कोई लगा सकता है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर वाइटामिन ई बीट्स हैं, माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन है। तो ये जो वाइटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स हैं ना, ये पूरे पाकिस्तान में अगर आप रिसर्च करेंगे प्रोडक्ट्स को लेकर तो भाई पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 से 3 प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर वाइटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स इनकी एडिशन की गई है। और ये जो है ना, ये इतनी प्रीमियम क्वालिटी की चीजें होती हैं कि ये अगर आप देखेंगे ना भाई, जो खवातीन महंगे महंगे फेशियल्स कराती हैं बहुत महंगे हजारों वाले, उन फेशियल्स के अंदर वाइटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स को ऐड किया जाता है। तो बिल्कुल ये 2-in-1 फार्मूला होने वाला है, यानी कि आपकी नाइट क्रीम तो है ही है, लेकिन ये आपको रिजल्ट तो देगी ना डी स्किन ब्यूटी क्रीम, कि ऐसे देगी कि भाई आपने जैसे कोई महंगा सा फेशियल कराया हो। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप सारे लोग ही कर सकते हैं। आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करके सिर्फ 2 रातें इस्तेमाल करेंगे तो आपके चेहरे पर बहुत अच्छे खासे रिजल्ट आ चुके होंगे। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बाहर के ममालकात में भी आपको मिल सकती है। तो जाइए और परचेज कीजिए और खूबसूरतियाँ हासिल कीजिए। और जनाब डायल करते रहिए 03-12-50-25-907 बुड़ी 312 50-25-970 अब यो नंबर आहे 03-27-38-43-09 बुड़ी 332 73-84-309 नंबर डायल कयो ऐं पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन जो फेस वॉश अवेलेबल करायो। छो त बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻायो ऐं डी स्किन जो फेस वॉश न लॻायो, ईअं मज़ो न ईंदो न। डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठो त गॾो गॾु डी स्किन जो फेस वॉश बि लाज़मी वठो। ॿई चीज़ूं गॾु गॾु इस्तेमाल कयो, तव्हांखे ख़ूबसूरती मिले, मुकमल ऐं तव्हां सुहिणा हुजो।

0: वाह साईं वाह शमन जो गानो एंजॉय कयूं पया ई प्रोग्राम में तवा के चौदा भली करी आया प्रोग्राम तवा जो पांजो आए जितां जितां तवा सागे सोना मानो बदो पया सबनी जो मोहब्बत आहिन भाऊ एंड स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो भाऊ सोना सोना थी वनो जी अच्छा अली देना भाई में सुन रहे हैं कश्मोर से थैंक यू के ते भाई जान को अमानुल्लाह महर आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है थैंक यू दर्दे दिल कहती है की वाओ माई फेवरेट सॉन्ग शेला गुल वाला फरमाइश करने वाली थी अच्छा देखो देखो मैंने पहले लगा लिया
1: मान नवाजिया में मुझे शहर जमा हूं जो
0: अच्छा हिदायतुल्लाह कहते पता नहीं एक चेन गिफ्ट करो फिर बताऊंगा
1: मुझे शहर जमा हूं जो
0: अब मैं क्या ही बोलूं

अल्लाह घोट फेशियल कराइण वियो आहे. घोट खे चयो बाबा फेशियल बेशियल खे छॾियो, हाणे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो. फेशियल में वॾो टाइम लॻंदो आहे, पैसा बि इलाही लॻंदा आहिनि. डी स्किन ब्यूटी क्रीम बसि परचेस करे अचो ऐं तव्हां इस्तेमाल कयो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांखे सफ़ा मिंटनि में, बल्कि ॿ रातूं अगरि तव्हां इस्तेमाल कयो था त तव्हांखे भला रिज़ल्ट मिली वेंदा. सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो, छॾियो इन्हनि सभिनी चीज़ुनि खे. अच्छा रमज़ान भाई हमारे साथ है. रमज़ान भाई बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ है. निसार महर में सुन रहे हैं, हाय. तालिब मेरी भाई हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया तालिब भाई. रिजवान अली कहते हैं, बहना कैसी हो, यस्टरडे आपसे रिक्वेस्ट किया था आप. अच्छा गाना आपका रह गया था, चलिए ठीक है मैं देखती हूँ गाना लगा देंगे आपका. और कहते हैं कि फकत निगाह से होता है फैसला दिल का, ना हो निगाह में शोखी तो दिलबरी का क्या है. वाह वाह वाह वाह.

अच्छा हनीफ अलबलोची कहते मैम गोल्ड सऊदी अरबिया का बेस्ट है। अच्छा सही है। साजिद कहते हैं बहुत बहुत अच्छी है भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम, माशाल्लाह डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए, वाकई आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। हजार भाई कहते हैं क्या अच्छा शायद मिल सकती हैं, आप जाइएगा और जरा मालूमात लीजिएगा, क्या पता मिल ही जाए। और मोहम्मद जमान भाई कहते हैं मेरा टॉपिक वाला कॉमेंट रीड नहीं हुआ, मैंने कर लिया।

साईं वाह वाह साईं वाह तव्हांजो मोहबत हूंदियूं आहिनि बाबा जेके प्रोग्राम में तव्हां सपोर्ट कंदा आहियो प्रोग्राम में तव्हां साथ ॾींदा आहियो माशाल्लाह तव्हांजा इलाही सारा सुठा सुठा फीडबैक्स मिलिया असांखे ऐं खोड़ सारे माण्हुनि असांजी पोस्ट खे लाइक बि कयो आहे ऐं शेयर बि करे छॾियो आहे ऐं तव्हां डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल बि करे रहिया आहियो ऐं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल जेके बि माण्हू कयो था असांखे फीडबैक ज़रूर ॾींदा कयो जेके बि ॿुधंदड़ माण्हू आहिनि उन्हनि खे ख़बर पइजी वञे त बाबा डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो जेको इस्तेमाल आहे उहो अगरि असां कयूं त असांखे बि भला रिज़ल्ट मिली सघंदा छो त कुझु माण्हू इन चीज़ में कंफ्यूज़ हूंदा आहिनि त असांजी स्किन त थोरी सेंसिटिव आहे कोई प्रोडक्ट सूटी न आहे कंदो त असां लॻायूं या न लॻायूं त तव्हां बि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सघो था डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जेकी आहे न हे सभिनी माण्हुनि जे लाइ आहिनि ऐं सभु माण्हू मतिलबु सभु माण्हू लॻाए सघंदा चाहे तव्हां मर्द हज़रात आहियो चाहे तव्हां ख़वातीन आहियो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो यूज़ कयो ऐं सुहिणा सुहिणा थी वञो।

ये बहुत ही प्यारा सा गाना एंजॉय कर रही हूँ, गाना एंजॉय करेंगे जनाब, लेकिन साथ साथ आप लोगों को बताते चलेंगे भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में। तो आप अच्छी अच्छी बातें जानते हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का आप इस्तेमाल करेंगे तो कितने सारे आपको फायदे मिलने वाले, लेकिन उन लोगों को जरा बताएं जो लोग डी स्किन का फेस वॉश यूज करने वाले हैं। तो डी स्किन का जो फेस वॉश है ना वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो भाई अवेलेबल हो चुका है, हर जगह से आप जाकर परचेज कर सकते हैं। और डी स्किन का जो फेस वॉश है ना ये हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है, और ये जो हाइलोरोनिक एसिड सीरम होता है ना यहाँ की स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वैसे ही होता है भाई अगर आप खाने पीने का ख्याल रखते हैं तब भी आपकी स्किन में बहुत सारी चीजें जो है ना वो अच्छा वर्क करती है। लेकिन ये भी चीज होती है कि सिर्फ अपने चेहरे पर जो है ना वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट लगाना भी काफी नहीं होता, अगर आपके चेहरे पर कोई अच्छा सा प्रोडक्ट सूट नहीं करता या फिर आप चाहते हैं कि कोई अच्छा सा प्रोडक्ट हमें मिलना चाहिए जिसका इस्तेमाल करें, और ऐसे ही चक्करों में आप प्रोडक्ट जो है वो चेंज करते रहते हैं, कभी कौन सा साबुन कभी कौन सा फेस वॉश, तो जनाब इन चीजों से जरा छुटकारा हासिल कीजिए, जरा जिंदगी में सांस की सुकून की सांस लीजिए। और यहाँ पर आपके लिए डी स्किन का फेस वॉश आ चुका है, और डी स्किन का जो फेस वॉश है ना ये इतना जबरदस्त और प्रीमियम क्वालिटी का फेस वॉश है जिसका इस्तेमाल आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करेगा। और जब आप इस्तेमाल करेंगे डी स्किन का फेस वॉश तो आपकी स्किन के अंदर तक जाकर आपकी स्किन को डीपली जो है ना वो क्लीन करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, आपकी स्किन को हमेशा हाइड्रेट रखता है। तो बहुत सारे आपने फेस वॉश ट्राई करके देखे होंगे, लेकिन जब आप डी स्किन का फेस वॉश ट्राई करेंगे ना तो बात ही अलग होगी, और आपके चेहरे पर जो निखार आएगा खूबसूरती आएगी उसकी तो भाई क्या ही बात होगी। तो डी स्किन का जो फेस वॉश है ये जरूर आप ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम क्रीमें नहीं लगा पाते, तो अगर आप क्रीमें नहीं लगा पाते या अभी तक आपकी उम्र नहीं हुई है क्रीमें लगाने की तो आप ऐसा कीजिए डी स्किन फेस वॉश का यूज कीजिए। और डी स्किन का फेस वॉश जो है ना ये आप हर उम्र में इस्तेमाल कर सकते हैं, हर स्किन के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो लाजमी इस्तेमाल कीजिए, और जरा अपनी खूबसूरती का ख्याल रखिए और खूबसूरत खूबसूरत होते जाइए। अच्छा साजिद हुसैन कहते हैं जी अच्छी क्रीम है बिल्कुल डी स्किन ब्यूटी क्रीम। वासु भाई आपको भी प्रोग्राम पसंद आ रहा है, थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई। हिदायतुल्लाह कहते हैं सदरा मैंने सुना है, जी जी बिल्कुल आपने सही सुना, ये मैंने भी देखा था और मैं मुझे थोड़ी सी एक्साइटमेंट हो चुकी थी कि भाई हाँ मेरा फेवरेट ड्रामा आने वाला है तो अच्छी बात है। हजार भाई कहते हैं कि सिस्टर आपको शाम 5 बजे वाले प्रोग्राम में सॉन्ग की रिक्वेस्ट करूंगा। जी बिल्कुल मैं आपका गाना चलाऊंगी, दिल से आप फरमाइश किया करें, आपका गाना दिल से लगाया जाएगा। और फहीम भाई कहते हैं फेस वॉश वाला मैं हूँ अदा, बिल्कुल आप फेस वॉश लगाइए और अच्छे से लगाइए। कहते हैं कि अदा जब आपका शो सुनता हूँ तब हमेशा सबकी कॉल आना स्टार्ट हो जाती है, ऐसा क्यों होता है दादा? मैं बात खत्म करना चाहता हूँ, वो बात को लंबा करते हैं। अरे भाई ऐसा उनको बोल दिया करे कि 1 बजे से लेकर 3 बजे तक मुझे कॉल नहीं किया करे ये टाइम जो है ना ये हमारा है बस, तो हमें दिया करे। और निधि कहती है कि

अच्छा कहती हैं बाकी तीन लोग पोस्ट को लाइक करो फिर 60 लाइक्स हो जाएंगे, हर चीज पूरी अच्छी लगती है। मैं भी यही चाहती हूँ, सारी चीजें जो ना मतलब मुनासिब होनी चाहिए और मिकदार में होनी चाहिए, तो बाकी दो लोग अभी लाइक करें पोस्ट को। और इसी के साथ साथ बतूल ने हमें जिस गाने की फरमाइश कर दी थी, सो फाइनली वो गाना हम लगाते हैं जी। और ये गाना हम सुनेंगे, बड़ी कोशिशों के बाद ये गाना मुझे मिला है, तो हम सुनेंगे। और बतूल आप जरा गाना सुनिए अपना और नाराजगी खत्म कीजिए अपनी। रिजवान भाई कहते हैं कि बहन सॉन्ग प्ले करो। भाई आपका गाना हम 5 बजे वाले प्रोग्राम में सुनते हैं, ठीक है।

ओके जी, इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे बिल्कुल करीब आ चुका है, जाते जाते आप लोगों को जरा बताकर जाऊंगी कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन का जो फेस वॉश है ये आप कहीं से भी जाकर परचेज कर सकते हैं, आपके लिए हमने हर जगह अवेलेबल करा दिया है। लेकिन फिर भी अगर कहीं पर कोई ऐसा एरिया रह चुका है जहाँ पर अवेलेबल अभी तक नहीं हुए हैं, तो उसके लिए आपको नंबर जो बताए जाते हैं प्रोग्राम में उनके ऊपर रब्ता जरूर किया करें, ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर पर भी अवेलेबल हो जाए, आपको आसानी हो। बस आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर चले जाए, वहाँ से आप इजिली डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन का फेस वॉश परचेज करें। ठीक हो गया, और इसी के साथ वरी ना सा मुलाकात मुझे थे पई पंच बजे वाले प्रोग्राम में, तो पांच ओ हिनु सरो खया रखना केते का गलती थी, मुझे त माजरत कयूं था, जे जो को फीडबैक रहजी वयो आहे, को गानडो रहजी वयो आहे, त बाबा माजरत मोकलानी ना है। सिलसिला में सा सलामत, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, लव यू ऑल।

0: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार. सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो.
4: अहां जो गाड़ी खरीद करण जो इरादो आहे
1: या पंहिंजी पुराणी गाड़ी विकणण चाहियो था, त पोइ अचो बालाज मोटर्स मोरो ते,
4: जिते तव्हां खे मिलनि थियूं टोयोटा, सुजुकी, होंडा,
1: किया, स्पोर्टेज ऐं ॿियनि कंपनियुनि जूं.

फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पारां कोर हेडक्वार्टर्स पिशावर जो दौरो, हर वक्त चौकस रहण ऐं ऑपरेशनल तयारी बरकरार रखण जी हिदायत। एसपीआर मौजूद फील्ड मार्शल खे केपीके जी सिक्योरिटी सूरतहाल ते ब्रीफिंग डि॒नी वई। सूबे में जारी दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ ऑपरेशनल सरहदी इंतज़ाम ऐं फॉर्मेट्स जे ऑपरेशनल तयारियुनि बाबति बि आगाह कयो वियो। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चयो आहे त शहीदनि जी कुर्बानीनि खे विसारे नथो सघिजे। फ़ौज दहशतगर्दनि खे शिकस्त ॾियण ऐं मुल्क में जटादार अमुन जे क़याम लाइ पुरअज़म आहे। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया ऐं मिस्री परडे॒ही वज़ीरनि जी न्यूयॉर्क में मुलाक़ात। खिते जी सूरतहाल समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ॻाल्हियूं कयूं वयूं। खिते जी सूरतहाल ऐं अमुन जे क़याम वारी कोशिशुनि जारी रखण ते इतफ़ाक़ कयो वियो। नायब वज़ीर आज़म साकरार सऊदी ऐं लिबियाई परडे॒ही वज़ीरनि सां अलॻि अलॻि मुलाक़ातूं बि कयूं।

G7 मुल्क ईरान खां हुसैन जी हिमायत खत्म करण जो मुतालबो करे छड़ियो। गडियल कौमन में अमेरिका, बरतानिया, कैनेडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली ए जापान के परडेही वजीरन जो इजलास। हुसैन खां फौजी कार्रवाई रोकण, धमकियों जो सिलसिलो बंद करण, गालिन तरफ वापस अचण जो मुतालबो कयो वयो। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान गडियल कौमन के इजलास में शिरकत लाइ न्यूयॉर्क रवानो। परडेही वजीर अब्बास इराकची पहिरे ही न्यूयॉर्क पहुतल। साफिन सां ॻाल्हाईंदे अब्बास इराकची चयो त गडि॒यल क़ौमूं आलमी अमुन ऐं सलामती जो तहफ़ुज़ करण में नाकाम थियूं आहिनि। आलमी इदारे ते एतमाद बि ख़तम थी चुको आहे। गज़ा में रवानी जंग बंदीअ जी भञकड़ी थी रही आहे। तकरार जे निबेरे लाइ तकड़ा कदम ज़रूरी आहिनि। फलस्तीनी बाबति कमेटीअ खे ख़िताब कंदे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चयो आहे त अमेरिका, मिस्र, कतर ऐं तुर्किया जूं फलस्तीनी मसले ते कोशिशूं सारा जोगियूं आहिनि। गज़ा समेत फलस्तीन जो मसलो हल जो घुर्जाउ आहे। वरी वज़ीर सैद मुराद अली शाह सां खोराक जे आलमी इदारे जे नुमाइंदे अनीता हर्ष जी मुलाक़ात। स्कूलनि में खाधे जी फरामी, अॻुवाट कदमनि ऐं समाजी तहफ़ुज़ लाइ सहकार वधाइण ते ग़ौर कयो वियो। सिंध हुकूमत ऐं गडि॒यल क़ौमनि जे खोराक बाबति आलमी इदारे विच में सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़। सैद मुराद अली शाह चयो आहे त सिंध मौसमियाती तब्दीली सबबि सभ खां वधीक मुतासिर थींदड़ ख़ितनि में शामिल आहे। ग़िज़ाई कोर्ट खे मुंहुं ॾेई ऐं स्कूलनि में हाज़िरी बहितर बणाए मज़बूत सिंध जो बुनियाद रखियो पियो वञे। मीरपुर माथेलो वेझो ॿिनि धुरियुनि में सङावती तकरार सां झेड़ो, टे ॼणा क़तल, पंज ज़ख़्मी। ॻोठ बाघो ॾहो में मरणास बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में सङावती तकरार सां झेड़ो थियो। झेड़े दौरान गोॾियूं लॻण सबबि बिलावल, मरणास वकार ऐं मुख़्तियार मरणास मारिजी विया आहिनि। ज़ख़्मी में जलाल

0: असे मासूम गुलाब जी गुल साहब हल साहब कयो मुझे बच्चे के 15 ली भी कोड चा उन जी जी जलामा उन जो मोबी नसीब आखरी दीदार तक असा जो पेटी में लाश घुमायो लेश लाश के पेटी में आयो ना मां डिठो पी डिठो ना अमर उन जो लाश डिठो आखरी दीदार बेन जो न कयो पंजन मीटर लाया आयो पंजन मीटर में रवानो थियो
1: नवा नौजवान शागिर्द बनन था नवान उनके ब्लैक मेल करे बिना पैसा इंतजाम के ट्रिप कन था ब्लैक मेल कन था
2: यूनिवर्सिटी टेलिंग जो घर ना है पर कोस्ट घर बन जी आज यूनिवर्सिटी नवाज शाह जी
3: आऊं इन्हें जे को है सिक्योरिटी चीफ का सवाल तो क्या
4: व्हाट इन व्हाट आउट समर 2020
5: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News।
6: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
7: दुनिया के ज्यादातर मुमालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है, सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो मुमालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
8: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी, मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सारिफ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
9: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छिटियूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
10: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
11: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
10: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
11: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
10: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
11: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
12: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
9: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
12: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
9: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन।
12: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
9: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
12: 0331252576।
9: जी हा, 2315525786।
12: जीएफएम रेडियो नेटवर्क,
9: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जदे भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो, छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इनन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली आस पास की आवाम लाए खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% एं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी, उहा बे डी घुराए पूरी करे डींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुंचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9:30-6:30 शाम ताई। नोट, असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
3: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि, त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
7: सुनते रहो GFM 90.4।
8: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो,
9: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
8: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
9: हाँ, गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
8: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलाइण लाए
9: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
8: 0331-252-5786।
9: जी हाँ, 2311-2525-786।
8: GFM रेडियो नेटवर्क,
9: सिंध जो आवाज़।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
1: Hi, hi, hi.

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: ऑपरेशनल जे सरहदी इंतजाम ऐं फॉर्मेशन जे ऑपरेशनल तयारियुनि बाबति आगाह कयो वियो. फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शहीदनि जी यादगार ते हाज़िरी भरी ऐं भेटा पेश कई. पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया ऐं मिस्री परडेही वज़ीरनि जी न्यूयॉर्क में मुलाक़ात. खिते जी सूरतहाल समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ॻाल्हियूं. खिते जी सूरतहाल ऐं अमन जे क़याम वारी कोशिशूं जारी रखण ते इतफ़ाक़. नायब वज़ीर आज़म इसाक़दार सऊदी ऐं लिबाई परडेही वज़ीरनि सां अलॻि अलॻि मुलाक़ातूं बि कयूं. G7 मुल्क ईरान खां हुसैन जी हिमायत ख़त्म करण जो मुतालबो करे छॾियो. गॾियल क़ौमनि में अमेरिका, बरतानिया, कैनेडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली ऐं जापान जे परडेही वज़ीरनि जो इजलास. हुसैन खां फ़ौजी कार्रवायूं रोकण, धमकियुनि जो सिलसिलो बंदि करण ऐं ॻाल्हियुनि तरफ़ वापसि अचण जो मुतालबो कयो वियो. ईरानी सदर मसूद पज़िशान गडि॒यल क़ौमनि जे इजलास में शिरकत लाइ न्यूयॉर्क रवानो. परडेही वज़ीर अब्बास इराकची पहिरीं न्यूयॉर्क पहुतल. साफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे अब्बास इराकची चयो त गडि॒यल क़ौमनि आलमी अमुन ऐं सलामतीअ जो तहफ़ुज़ करण में नाकाम थियूं आहिनि. आलमी इदारे ते एतमाद बि ख़त्म थी चुको आहे. ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाकिर कालेबाफ चयो आहे त हाणे ईरानी मिज़ाइल दुनिया में कंहिं बि हंधि ते टारगेट खे निशानो बणाए सघनि था. ट्रम्प पंहिंजी ताक़त ईरान ते मड़े नथो सघे. ईरान जमी बीठल आहे.
4: पाकिस्तान के दौरे में भी उन्हें आना चाहिए और जरा जल्दी जल्दी आना चाहिए और वो तशरीफ लाए और उनके साथ हम जो है वो बात करेंगे और उस दिन अगर वो हमें बताते हैं कि ये रिलीफ हम दे रहे हैं तो फबिया और अगर रिलीफ नहीं मिलेगा तो फिर हमारे पास अक्टूबर का पहला हफ्ता भी है, पहला अशरा भी है. हम उसी तरीके से उसी कुव्वत से अपने इस लॉन्ग मार्च को कंटिन्यू करेंगे.
3: जमात इस्लामी पेट्रोलियम लेवी खत्म करण खिलाफ़ इस्लामाबाद ॾांहुं थींदड़ मार्च मुलतवी करे छॾियो. अवाम खे रिलीफ न मिलण जी सूरत में अक्टूबर में ॿीहर मार्च करण जो ऐलान. जमायत इस्लामी जे अमीर हाफिज़ नईम चयो आहे त एहतजाज मुलतवी करण जो फ़ैसिलो वज़ीर आज़म जी दरख़्वास्त ते कयो आहे. जमायत इस्लामी जी क़यादत वतन वापसीअ ते वज़ीर आज़म सां मुलाक़ात कंदी. मुलाक़ात दौरान लेवी ते अवाम खे रिलीफ न ॾिनो वियो त अक्टूबर में ॿीहर लॉन्ग मार्च कंदासीं. वफ़ाक़ी हुकूमत जो धरणे वारे मामले ते पीटीआई सां ॻाल्हियूं करण खां इनकार. वफ़ाक़ी वज़ीर अता तारड़ चयो आहे त पीटीआई वारनि जे ॻाल्हियुनि बाबति तारीख़ सुठी नाहे. ख़बर नाहे त कंहिं सां ॻाल्हियूं करणियूं आहिनि. हुननि सां ॻाल्हियूं करण जो को फ़ाइदो नाहे. ममलकती वज़ीर तलाल चौधरी चयो आहे त बानी जूं भेनर पार्टी ते कब्ज़ो करण लाइ वॾो हादसो चाहिनि थियूं. इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो हुकुम सभिनी खे मञणो पवंदो. न मञंदड़ ख़िलाफ़ कार्रवाई थींदी. वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह सां खुराक जे आर्मी इदारे जे नुमाइंदे अनीता हर्ष जी मुलाक़ात. स्कूलनि में खाधे जी फराहमी, अॻवाट क़दमनि ऐं समाजी तहफ़ुज़ लाइ सहकार वधाइण ते गौर कयो वियो. सिंध हुकूमत ऐं गडि॒यल क़ौमनि जे खुराक बाबति आलमी इदारे विच में सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़ कयो वियो. सैयद मुराद अली शाह चयो आहे त सिंध मौसमियाती तब्दीली सबबि सभ खां वधीक मुतासिर थींदड़ ख़ितनि में शामिल आहे. ग़िज़ाई कोर्ट खे मुंहुं ॾे ऐं स्कूलनि में हाज़िरी बहितर बणाए मज़बूत सिंध जो बुनियादु रखियो पियो वञे. मीरपुर माथेलो वेझो ॿिनि धुरियुनि में संगावती तकरार सां झेड़ो. टे ॼणा क़तल, पंज ज़ख़्मी. ॻोठ बागो डो में मरणास बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में संगावती तकरार सां झेड़ो थियो. जे दौरान गोलियूं लॻण सबबि बिलावल, मरणास वकार, मुख़्तियार मारिजी विया. मक़तूलनि जा लाश ऐं ज़ख़्मियुनि खे इस्पताल मुंतक़िल कयो वियो. टंडो गुलाम हैदर वेझो पढ़ियल नारी जो घर मां फाहो लॻल लाश हथायो आहे. वारसनि जो साहुरनि ते क़तल करण जो इल्ज़ाम. ॻोठ जी कोली में रवीना ज़ाल केवल कोली जो घर मां लाश मिलियो आहे. पीउ ऐं चाचे पारां मुड़ुस ऐं साहुरनि ते नारीअ खे तशदुद करे क़तल करण जो इल्ज़ाम आहे. जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करण जो मुतालबो कयो वियो आहे. कंबर जे इलाइक़े कुबो सैद खान भरिसां गुज़िरियल ॾींहं क़तल कयल नौजवान जे धड़ खां धार कयल सिसी हथ कई वई आहे. नौजवान मंदूर चांडो जे गुज़िरियल ॾींहं सिसी खां धार थियल लाश मिलियो हो. खिपरो वेझो नारा केनाल मां अणॼातल शख्स जो लाश हथायो आहे। अस्पताल मुंतकिल कयो वियो आहे। दंग पतण वटां नारा केनाल मां अणॼातल शख्स जो लाश मिलियो। सुञाणप नथी सघी आहे।

अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: It's 4:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
0: Har din, har pehar, zindagi ki lehar. GFM 88 Network, Sindh ki awaaz.
2: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है. सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है. अब जिम्मेदारी हम सब की है. हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं. पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी.
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो. डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते.
4: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो. इन्हीं करे जदे भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो. छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था. पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी.
5: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ ख़ुशख़बरी. मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी. मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी. जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं. घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी. राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो. टाइमिंग सुबुह 9:30 to 6:30 शाम ताईं. नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा. एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली. राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163.
6: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी. छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो. सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श होसो. मोबाइल नंबर 03002962435. एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली.
7: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
8: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल.
7: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद.
8: रोज़ानो सुबुह जो 10 to 10:30 ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी.
7: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी. ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे.
8: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक, मातली. वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230.
9: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है.
0: सुनते रहो GFM 90.4.

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: It's 5 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: हेडक्वार्टर्स पिशावर जो दौरो कयो. फोर्सेस के हर वक्त चौकस रहण ऐं ऑपरेशनल तयारी बरकरार रखण जी हिदायत कई. फील्ड मार्शल केपी जे सिक्योरिटी सूरतहाल ते ब्रीफिंग डि॒नी वई. सूबे में जारी दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन, सरहदी इंतज़ामनि ऐं फार्मेशन जी ऑपरेशनल तयारियुनि बाबति बि आगाह कयो वियो. फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शहीदनि जी यादगार ते हाज़िरी भरी ऐं भेटा पेश कई. पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की ऐं मिस्री परडे॒ही वज़ीरनि जी न्यूयॉर्क में मुलाक़ात. ख़िते जी सूरतहाल समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ॻाल्हियूं. ख़िते जी सूरतहाल ऐं अमन जे क़याम वारियूं कोशिशूं जारी रखण ते इतफ़ाक़. नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार सऊदी ऐं लीबिया परडे॒ही वज़ीरनि सां अलॻि अलॻि मुलाक़ातूं बि कयूं. G7 मुल्कनि ईरान खां हुसियनि जी हिमायत ख़तम करण जो मुतालबो करे छॾियो. गॾियल क़ौमनि में अमरीका, बरतानिया, कैनेडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली ऐं जापान जी परडे॒ही वज़ीरनि जो इजलास. हुसियन खां फ़ौजी कार्रवाइयूं रोकण, धमकियुनि जो सिलसिलो बंदि करण ऐं गालियुनि तरफ़ वापसि अचण जो मुतालबो कयो वियो. ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान गॾियल क़ौमनि जे इजलास में शिरकत लाइ न्यूयॉर्क रवानो. परडे॒ही वज़ीर अब्बास अराग़ची पहिरीं न्यूयॉर्क पहुतल. साफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे अब्बास अराग़ची चयो त गॾियल क़ौमूं आलमी अमन ऐं सलामती जो तहफ़ुज़ करण में नाकाम थियूं आहिनि. आलमी इदारे ते एतमाद बि ख़तम थी चुको आहे. ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाकर किटा हाणे ईरानी मिज़ाइल दुनिया में कंहिं पढ़ाए सघनि था. ट्रम्प पंहिंजी ताक़त ईरान ते मढ़ी नथो सघे.
4: पाकिस्तान के दौरे में भी उन्हें आना चाहिए और जरा जल्दी जल्दी आना चाहिए. अब वो तशरीफ लाए

0: के साथ हम जो है वो बात करेंगे और उस दिन अगर वो हमें बताते हैं कि ये रिलीफ हम दे रहे हैं तो फबिया, और अगर रिलीफ नहीं मिलेगा तो फिर हमारे पास अक्टूबर का पहला हफ्ता भी है, पहला अशरा भी है, हम उसी तरीके से उसी कुव्वत से अपने इस लॉन्ग मार्च को कंटिन्यू करेंगे।
1: जवाब सलामी पेट्रोलियम लेवी खिलाफ इस्लामाबाद आज थींदड़ मार्च मुलतवी करे छो। अवाम के लीफ न मिलने की सूरत में अक्टूबर में बीहर मार्च करने का ऐलान। जवाब सलामी के अमीर हाफिज नईम है एहतजाज मुलतवी करने का फैसलो वजीर अजम की दरख्वास्त है। जवाब सलामी की क्यादत वतन वापसी से वजीर अजम से मुलाकात कदी। मुलाकात दौरान लेवी से अवाम के लीफ न डनो वो तो अक्टूबर में बीहर लॉन्ग मार्च कदी। वफाकी हुकूमत जो धरने वाले मामले से पीटीआई से गालू करने का इनकार। वफाकी वजीर अल्लाह तआला चयो है तो पीटीआई वालों की गालियों बाबत तारीख सुठी ना है, खबर ना है तो कें से गालू करनी आन, उन्हें गालू करने जो को फायदो भी ना है। मुनबकती वजीर तलाल चौधरी चयो है तो पानी जो बैनर पार्टी के कब्जे करण लाए वो हादसो चाहन थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट जो हुक्म सभी के मनो पवन, न मनीदड़ खिलाफ कार्रवाई थी।

वॾे वज़ीर मुआद अली शाह सां ख़ुराक जे आलमी इदारे जी नुमाइंदी अनीता हर्श जी मुलाक़ात। स्कूलनि में खाधे जी फ्राहमी, अॻुवाट कदमनि ऐं समाजी तहफ़ लाइ सहकार वधाइण ते ग़ौर कयो वियो। सिंध हुकूमत ऐं गॾियल क़ौमनि जी ख़ुराक बाबति आलमी इदारे विच में सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़। मुआद अली शाह चयो त सिंध मौसमियाती तब्दीली सबब सभ खां वधीक मुतासिर थींदड़ ख़िततनि में शामिल आहे। फज़ाई कोर्ट खे मुंहुं ॾेई ऐं स्कूलनि में हाज़िरी बहितर बणाए मज़बूत सिंध जो बुनियाद रखियो पियो वञे। मीरपुर माथेलो वेझो ॿिनि धुरियुनि में सगावती तकरार सां जहिड़ो टे ॼणा क़तल, पंज ज़ख़्मी। घोट बागू ड्रहो में मरनास बिरादरी जी ॿिनि धुरियुनि में सगावती तकरार सां जहिड़ो थियो। जहिड़े दौरान गोलियूं लॻण सबब बिलावल मरनास वकार ऐं मुख़्तियार मारिजी विया। मक़तूलनि जा लाश ऐं ज़ख़्मी अस्पताल मुंतकिल। सिंधु गुलाम हैदर वेझो पढ़ियल नारी जो घर मां फाहो लॻल लाश आहे। वारिसनि जो साहुरनि ते क़तल करण जो इल्ज़ाम। घोट जियो कूली में रवीना ज़ाल केवल कूली जो घर मां लाश मिलियो। पीउ ऐं चाचे पारां मुड़ुस ऐं साहुरनि ते नारी खे तशद्दुद करे क़तल करण जो इल्ज़ाम। जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करण जो मुतालबो। कंबर जे इलाइक़े कबो सईद ख़ान भरिसां गुज़िरियल ॾींहुं क़तल कयल नौजवान जे धड़ खां धार कयल सिसी हथ। नौजवान मंज़ूर चांडियो जो गुज़िरियल ॾींहुं ससी खां धार थियल लाश मिलियो हो। खिपरो वेझो नारा केनाल मां अणॼातल शख़्स जो लाश हथ अस्पताल मुंतकिल। नंग पतण वटां नारा केनाल मां अणॼातल शख़्स जो लाश मिलो, सुञाणप न थी सघे।

0: असल मासूम गुलाब जी गुल सावल साहब कयो मुझे बच्चे के 15 ली भी कोल चाव उन जी जी चला मां उन जो मौके लसी बाकरी दी तार तक असल जो पेटी में लाश घुमायो लेश लाश पेटी में आयो ना मां डिठो पी डिठो ना अमर उन जो लाश डिठो आखरी दीदार भी उन जो न कयो पंजन मीटर लाए आयो पंजन मीटर में रवानो
1: जेके नवा नौजवान शागिर्द बनन था नवा उनके ब्लैकमेल करे उनका पैसा इंतजाम के ट्रिप कन था ब्लैकमेल कन था
2: यूनिवर्सिटी टेलिंग जो घर ना है पर कोस्ट घर बन जी आज यूनिवर्सिटी नवाशा जी
3: आऊं इन्हें ही जेको है सिक्योरिटी चीफ का सवाल तो कया त जेको असा जे शहीद जो कातिल है वो पास आउट हो यूनिवर्सिटी मा त वो उते हॉस्टल में छापियो करे
4: के मानो दा जे ते थी बाहर डो करे जी शेल्टर वठंदा पर असा खबर असा बच्चो दुनिया दिठो जुल्म थियो
5: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
6: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
7: सोना सिर्फ जेवर नहीं हर घर की अमानत होती है इसीलिए

बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड

कख सड़न पन सड़न सड़े साओ गाह जन रिझायो अल्लाह त उन लगे तिन खे सुहारी सिंध जे मलुक मिटी ते रहंदड़ तमाम मौजिज़ बुधंदड़न खे लाखीणे लतीफ़ जी बोली मेहरान जी छोली ऐं मिठड़ी अमड़ जे लोली जहिड़ा सुहिणा सलाम ऐं GFM 88 रेडियो नेटवर्क जे सॼी टीम जा कुर्ब क़बूल पवन। मौजूद सामईन, अव्हां जा कहिड़ा हाल आहिनि? अव्हां ख़ुशबाश आहियो, ठीक ठाक आहियो, चाक चङा भलायूं तरह जोड़ो। असांजी दुआ आहे त सदाई तारनि में चंडु हुजो, खीर में खंडु हुजो, मेवनि में अंबु हुजो, ऐं कॾहिं बि अव्हां जी मुर्क मेरी न थिए। सदाई अव्हां जे लुड़कनि जो ॾुकार ऐं मुर्कनि जो सुकार हुजे। शाल अव्हां खे कोसो वाह न लॻे, शाल अव्हां ॾुखियो ॾींहुं न ॾिसो। जुग जुग जीओ, उमिरि कंदा महकंदा ऐं गुलनि जीअं टिणंदड़।

आवाज़नि जी हिन उॾार में अॼु मोहबत जो साथ जुड़ी चुको आहे ऐं शो जो नालो आहे सिंधड़ीअ जी शाम।

सिंधी डी जी शाम में कवंदो सलाम चवंदे अवां जो मेज़बान अवां जो आर जे अवां ने पंहिंजो यूनुस बकारी प्यार ऐं पाव हुआ मोहबतुनि लफ़्ज़नि ऐं गुलाबनि जहिड़ा ख़ूबसूरत जज़्बात तव्हांजे ख़िदमत मौजूद सामाइन अवां शामिल थियण चाहियो था त हिकिड़ो मैसेज यादगिरी तौर ॾेई सघो था करे सघो था मैसेज तरीक़ेकार बिल्कुलु साॻियो ई उहो त लिखणो आहे अवां खे MTI स्पेस ॾियो पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखो पंहिंजो नालो लिखो ऐं 888-188 ते मैसेज ॾियारे मोकिलिजो जी हा 888-188 असांजो नंबर हुन ते मैसेज मोकिलिजो हुन मैसेजिस शामिल कंदासीं ऐं ॿी कलाक में हुनजी कॉल्स बि शामिल कंदासीं त पोइ हलूं था साज़ अहिड़ी सुरीले आवाज़ न जंहिं आवाज़ खे ॿुधी यकीन

0: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
1: हाँ, अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0308631633।

0: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ खु़श ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435, एड्रेस गुलाम अली रोड, मातली।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियुन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हईअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347

याद कयो आहे. थैंक यू. ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो ऐं सदाई सुखिया हुजो. कुंडरी खां चोहन कुमार कोहली ॿुधे पियो. डॉक्टर अनीता चौहान ॿुधी रही आहे. संगीता पारस, अवां जो तमामु घणियूं महिरबानियूं. भली कार चवंदासीं तव्हांखे. ऐं ॻोठ असांखे जॉइन कयो आहे पाबोवेरी थर खां. जी हा जनाब, उतां खां असांखे जॉइन कयो आहे दिलीप कुमार मेघवाड़, नोवल राय मेघवाड़ ऐं दानिश कुमार सूरजगुल सां गॾिजी. ऐं शंकर लाल तव्हां सां गॾु ॿुधे पियो. तव्हांजो बि तमामु घणी महिरबानी. ऐं अव्हांखे बि चवंदासीं भली कार ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो. चूहड़ जमाली खां नाज़ नगर खान जमाली ॿुधे थो. ऐं मोहम्मद हाशिम जमाली, मोहम्मद मेहराब जमाली, ग़ुलाम कादर जमाली अव्हां प्रोग्राम खे पसंदि कयो आहे. अव्हांजो तमामु घणी महिरबानी. अवीम शाद आबाद हुजो. ॻोठ पुनू खान पंवर खां असांखे जॉइन कयो रुस्तम अली पंवर. अव्हां जे पसंदि जे हवाले सां अव्हां लिखियो, मां अव्हांजो बि थोराए थो आहियां. थैंक यू. हर रोज़ ॾींहुं अव्हां रोज़ चवंदासीं भली कार. इरफान अली थेबो असांखे ॿुधी रहियो आहे खबड़ी भिट खां. इरफान थेबा साहिबु, तव्हांजो बि तमामु घणी महिरबानी. अवां असांखे खबड़ी भिट खां ॿुधो पिया. ऐं हाजी सुल्तान लुंड खां प्यार अली लुंड ॿुधे पियो. हाजी ग़ुलाम ख़ासकेली खां झंडे मरी खां क़ुर्बान अली ख़ासकेली ॿुधे पियो. अव्हांजो बि तमामु घणी महिरबानी क़ुर्बान. वेलकम था चऊं तव्हांखे. लुटको मोरी खां असांखे ॿुधे थो अब्दुरहमान लगारी. ऐं मिठा खान लगारी, तालिब हुसैन लगारी, अव्हांजी तमामु घणी महिरबानी. अब्दुरहमान ऐं मिठा खान लगारी ॻोठ खां ऐं मिठा खान लगारी लुटको मोरी खां ॿुधो था तमामु घणी मुहबत वञो. ऐं भली कार था चऊं तव्हांखे. अवां बि शाद ऐं आबाद हुजो. कुर्ब तव्हांजा मज़ामीन. ज़बरदस्त ट्रेक आहे अॼु ॿुधूं था. उन ट्रेक ऐं ब्रेक खां पोइ अवां सां गॾु गुज़ारींदासीं अॼु अञा बि घणो वक़्तु पाण गॾु हूंदासीं इनशाला. ऐं सवा कलाक जे बाक़ी साथ हूंदो, असांजो साथ हूंदो. सो तव्हांजूं मुहबतूं आहिनि जो तव्हां असांखे ॿुधो. ॻाल्हियूं कंदासीं. तव्हां जल्दी जल्दी सां मैसेज करे वठो, ताकी हिननि 15-20 मिंटनि जो साथ पंहिंजो जेको आहे मैसेज वारो, उन में तव्हांजो साथ भरपूर शामिल थी वञे. त पोइ लिखो MTI स्पेस ॾियो, पंहिंजे ॻोठ शहर जो नालो लिखो, पंहिंजो नालो लिखो ऐं 88 81 111 ते मैसेज हाणे मोकिलियो.

0: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो, छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इनन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
1: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है, इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराय तो जवाबित लागू हैं।
2: धर माशुम वरकोटी वरकोटी कदमुना दयो निवी दुनिया पलोर रवानवी, खुद पोलियो रंज दा कदमुनो द्रवले हुमशी, नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम पमहाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई, अखपल माशुमानो ता द पोलियो द मखनिवी द्वसास की वरकवल महेरवई, जकच हम दगसास की द माशुमानो द बदन दिफाई ताकत ज्यातवी औ द हगी द खूबुनो अलवत वजरी मुमी। पोलियो यानी मुस्तकिल माजूरी।
3: मातली आस पास की अवाम लाए खुशखबरी, मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12 सैकड़ो ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10 सैकड़ो रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी उहा बे डी घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सारिफ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुंचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं। नोट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
4: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जी एफ एम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
6: yeah!

वेलकम बैक मौजूद सामईन GFM 88 रेडियो नेटवर्क अवासण मुखातिब है अवा शो बुधी रहा हो जिनो नालो है सिंधड़ी जी शाम है मने मेजबान अवासण मुखातिब है यूनिस बकारी जी मौजूद सामईन अवा जो खोड़ सारा मैसेज जी शामिल कर वी जी न्यूज होंगी छह वगैरह उन कॉल्स भी शामिल कंदी मैसेज पहतो है असा के जी हा अमीर अली खासकेली सिराज खासकेली जो मातली टंडो गुलाम अली रोड का तमाम घनी मोहब्बत अवा के चौंदी भली कार असा के हाजी सुहो साहब बुधे पो हाजी सहतो साहब सॉरी हाजी सहतो साहब असा जॉइन करे तो हाजी सहतो साहब संदस गोठ हाजी सहतो उतं का बुधे पो शहबाज खासकेली बुधे पो साले सोलंगी बुधे पो ताज मोहम्मद सहतो बुधे पो आसिफ सहतो साहब बुधे पो तमाम घनी मेहरबानी असद सहतो थैंक यू जी गोठ है हाजी सहतो अवजा वा वा अव मोहब्बत अवा के चंदी भली कार खुश हुजो आबाद हुजो तारण में चंड हुजो खीर में खंड हुजो मेवन में अंब हुजो अवाज मोहब्बत भली कार चवंदी मुरीद मंगरियो संगराड़ का नजीर अहमद मंगरियो साहब बुधे पो अवा लिखो त दुनिया के हर शे में फायदो वो पर कैंजी मजबूरी में कदें फायदो न वो वाह वाह जबरदस्त चूंड अवी तमाम घनी मेहरबानी सरफराज राजड़ खिपरो का असा बुधे तो सुमार भील दिलीप कुमार मेघवाड़ अब्दुल हकीम बजीर अवाज तमाम घनी मेहरबानी वा वा जा जो असा जॉइन किया है खुश हुजो आबाद हुजो तारण में चंड खीर में खंड हुजो मोहम्मद अजीज जरवार असा बुधे तो गोट आलम खान जरवार का अवाज तमाम घनी मेहरबानी मोहब्बत जो अवा असा शामिल थी चुका है बल्कि जुड़ी चुका है यह अवाजी मोहब्बत है असी अवा के पैं मोहब्बत में वेलकम भली कार चवंदी जी जनाब असा मैसेज पहतो है गोठ है मोहम्मद तैयब थेबो उतं का हबीबुल्ला थेबो साहब बुधे पो अवा लिख यूनस साहब सलाम वालेकुम सलाम मिठा भा थैंक यू खुश हुजो आबाद हुजो जनाब मैसेज पहतो इस्माइल खान नोतकानी खां जी हा जनाब अल्लाह बचायो नोतकानी साहब बुधे पो मोहब्बत वा वा जहा भलीकार चवंदी तवे तक जॉइन कर वरतो है अवं साथ निभा है अवजे इन साथ से असि अवजे शुक्रगुजार आयू तमाम तमाम तमाम घणी मेहरबानी जी जनाब आपका शो नाइस है आपका प्रोग्राम नाइस है अब्दुल्ला असा के मेहर साहब मेहरापुर में शायद एमपी के अच्छा एमपी के मन मीरपुर खास में याद किया तमाम घनी मेहरबानी अब्दुल्ला मेहर साहब अवा जो मैसेज पहतो ढी खुशी थी शाद आबाद हुजो तारण में चंड खीर में खंड हुजो गोठ रसूल बख्श शंभाणी का असा के जॉइन किया है अब्दुल वहीद ऐवान अच्छा जी अवा लिखो तो शो जबरदस्त है तमाम घनी मेहरबानी भलीकार चवंदी तक वा वा जहा खुश हुजो आबाद हुजो थैंक यू जुग जुग जियो अवजे ये दुआ जी मोज सवीन साज आवाज साथ पंजाइप जो साथ है उनो रंग हों पैं हिसाब हों सो तभी तमाम घनी मेहरबानी मां तवाजो शुक्रगुजार आया जो तवासा याद कंदा आयो यकीनन जो इंदड़ कलाक हों कॉलन वो गोठ सोहराब निजामानी एक दफो बीहर मोहब्बती मंगण निजामानी याद किया है नंढड़े एहसान अली निजामानी याद किया है तहजो तमाम घनी मेहरबानी थैंक यू अवं तो असा नाला शामिल साई तवाजो बो मैसेज भी अस शामिल कर छो है तवाजो मोहब्बतों तवाजो मोहब्बतों भली कर आया जी कर आया जी जनाब मैसेज एक दफो बीहर असा के घोटकी का मिलो है जी जनाब गुलशेर मंगरियो साहब अवाज मोहब्बतों अवा भी शामिल थी चुका है सोना साई किरण कुर्ब तहजा ओके जनाब साज आवाज साथ में साथ है मोहब्बत जो मोहब्बत साथ से असि वी हलूँ अवा के एजाज साई की शायरी डा जिता फरजाना बहार जो मिठड़ो आवाज हवा में गूंजे तो गजी बुधंदी उन ब्रेक वी बल्कि शायद अस ब्रेक न वूँ ब्रेक हली पा अगत वी गुलाम हुसैन जलालाणी जो गोट है झोल में उत नाज फकीर मोहम्मद जलालाणी बुधे पो महबूब नाज जलालाणी बुधे तो मुख्तियार नाज जलालाणी आरजू असलम जलालाणी अवजी मेहरबानी वाले लिखो असलामुअलैकुम वालेकुम असलाम खुश हुजो आबाद हुजो
जी जनाब साज आवाज़ साथ में ब्रेक आहे नंढड़ो ऐं हीउ हूंदो म्यूज़िकल ब्रेक इन खां पोइ जॾहिं मां वापसि ईंदुसि तव्हांजो लॻंदो ज़बरदस्त ट्रैक प्ले कंदुसि जंहिंखां पोइ असां हलंदासीं ईंदड़ जेको ब्रेक हूंदो उन ॾांहुं ऐं उन खां पोइ वापसि जॾहिं ईंदासीं त पोइ हूंदियूं अव्हांजो कॉल्स उनजे लाइ असां अव्हांखे नंबर बि ॿुधाईंदासीं ऐं ॻाल्हियूं कंदासीं अव्हां सां।

म्याण खां बाबू मल्हा साहब दे पियो बाबा नी अवां म्याण खां असां खे जॉइन कयो आहे भली कार ऐं नफ़ीस खटी म्यापोटा तलहार खां ॿुधे पियो नफ़ीस खटी अवां जो तमामु घणियूं महिरबानियूं ऐं हाफ़िज़ अब्दुल जब्बार खटी हाफ़िज़ मोहम्मद हारून खटी असांखे ॿुधी रहिया आहिनि पाटार बदीन खां वेलकम था चऊं अवां।

ही आहे GFM 88 रेडिओ नेटवर्क। हा शो ॿुधो पिया सिंधड़ी जी शाम यूनिस बकारी जे नाम जी जी मुझे नाम न मुझा सलाम अवां जे नाम तपाई गजी ही ट्रैक अहमद मुगल जो एंजॉय कयूं था ऐं दर्दीले हिन गीत सां न्यूज़ ब्रेक ॾांहुं हलंदासीं जितां खां अव्हांखे ख़बरूं चारियूं ॿुधाईंदासीं ॾेह तोड़े परॾेह जूं। उतां वापसि अची बाक़ी ॻाल्हियूं कंदासीं अव्हां सां टेलीफोन कॉल्स वारियूं पोइ साथ निभाईंदो न।

फिलहाल ही दर्दीलो साज ही आवाज अजो तक अच्छी बताऊं हिन खां पोइ न्यूज़ ब्रेक ते हलंदासीं उन खां पोइ कमर्शियल ब्रेक हूंदो ऐं जीअं ई वापसि ईंदासीं पूरी पूरी असांजी नशरियात अव्हां जे नाओ हूंदी।

0: छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदि सो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
1: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347

0: बेकवाड़ा तरफ लगारी गुलाब गुल फकीर अमर जी तवा के दुआ कर
1: मेहरबानी लख तोरा कुर्ब साईं लख तोरा साज ऐं आवाज़ जे साथ में हिकड़ी वधीक कॉल अची चुकी आहे ॾिसंदासीं त असां गॾु केरु आहे हैलो अस्सलाम वालेकुम जी हैलो अस्सलाम वालेकुम जी केरु पिया ॻाल्हाइनि जी सबा जी जी जी जी कहिड़ो गानो ॿुधण चाहियो था फाइज़ा जेको अच्छा अॼु हाणे जेको कॉलन जो जेको सिलसिलो हूंदो आहे उन बैकग्राउंड में गानो हलंदो ऐं कोशिशि कंदासीं त फाइज़ा जेको बि गानो तव्हांखे ॿुधायूं थैंक यू महिरबानी अलाह सां ख़ुशि रखे थैंक्यू जी जनाब सभा जी कॉल ते मुंहिंजे ब्रेक जो टाइम थी वियो आहे पर गॾो गॾु कॉल्स बि वठंदा हलंदासीं ॾिसंदासीं त कॉल ते केरु आहे हलो अस्सलाम वालेकुम अदा रेडियो परे कयो अच्छा जेको रेडियो पासे में खुलियल करे कॉल कंदो आहे उनजी असां कॉल कटींदासीं छो त उहो असां वटि इको थी वॼंदो आहे ऐं उहो मुनासिब कोन लॻंदो तंहिंजे करे जॾहिं बि कॉल कयो था त पहिरीं आस पास जी रेडियो खे या त आवाज़ सफ़ा घटि कयो या पाण खां परे करे रखो त असांजो आवाज़ रिपीट तव्हांखे ॿुधण में न अचे हिकिड़ी वधीक कॉल अची चुकी आहे ॾिसंदासीं कंहिंजी आहे हलो अस्सलाम वालेकुम जी केरु पिया ॻाल्हायो
0: जो ख़ैर आहे तबियत सही आहे टाइट
1: चांडो साहिब नालो रिपीट करियो नालो छा आहे
0: बदरदीन चांडो साईं कीतर जबल खां
1: जी जी छा हाल आहे चांडो साहिब ख़ुशि आहियो ठीकु आहियो
0: ख़ैर अमन दुआ साईं नौकर तव्हांजा ॿियो ख़ैर आहे
1: आबाद हुजो शाद हुजो तारनि में चंड खीर में खंडु हुजो अवां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे
0: जी मुंहिंजा दोस्त आहिनि बाबर चांडियो और फहीम चांडियो अदनान चांडियो ज़ुल्फ़कार चांडियो फहीम चांडियो
1: जी जी जी
0: बाकी ॿुधण जेके बि आहिनि सभिनी खे मुंहिंजे तरफ़ां अस्सलाम वालेकुम यादि मदद
1: वालेकुम अस्सलाम महिरबानी लख थोरा ॾिसंदासीं त हाणे कॉल ते केरु

0: वालेकुम सलाम। मिठा माण्हू झिलूरी खां ख़ालिक लाशारी ॻाल्हायो।
1: जी ख़ालिक लाशारी साहब, छा हाल आहे? ख़ुशि आहियो? ठीकु आहियो?
0: तव्हांजो थधिड़ी अवन में शो ॿुधूं पिया, तमामु सुठो हले पियो।
1: जी जी, अवां सां गॾु केरु थो ॿुधे? महिरबानी महिरबानी मिठा माण्हू, लख थोरा तव्हांजा। ओके जनाब, ॾिसंदासीं त हाणे कॉल ते असां केरु हूंदो। ही आहे जीए FM 88 रेडियो नेटवर्क। अवां जो पंहिंजो शो ॿुधो पिया सिंधड़ीअ जी शाम, आरजे यूनुस बकारी जो सलाम। कॉल ते ॾिसंदासीं केरु आहे ऐं कॉल अटेंड करे वठूं। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम साईं।
1: साईं केरु साहब ऐं किथां खां? सिकंदर अली शंभाणी साहब, ख़ुशि आहियो? ठीकु आहियो? चाक चङा भला मातारा जोड़। अलहमदल भला, गर्मी जी मौसम आहे तव्हां ॾांहुं?
2: हा साईं, सख़्त गर्मी आहे, गर्मी तमामु घणी आहे
1: साईं। तव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे?
2: हा, शायर अली गुल वीरानी आहे, सखर मां सां गॾु ॿुधे थो। ऐं पंहिंजो नज़ीर अहमद मंगरियो साहिबु आहे, मोहम्मद बचल शंभाणी आहे। जिते मुंहिंजो मुसाफ़िर आवाज़ वञे थो, सिकंदर अली शंभाणी जे तरफ़ां सलाम।
1: वालेकुम असलाम, वालेकुम असलाम, थैंक यू वेरी मच, लख थोरा। दोस्तों मेहरबानो, कदरदानो, कॉल करण लाइ नंबर आहे 0334352578 ॿुड़ी 3024525। कॉल ते ॾिसंदासीं असां गॾु केरु, पर जॾहिं बि कॉल करियो त पाण वटि जेको रेडियो हुजे पियो हुनखे परे कजो, ताकी रेडियो ते क्लियर अचे। ॾिसंदासीं कॉल ते केरु। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम।
1: जी केरु साहब ऐं किथां खां? भेट ते चढ़ी मथे असांजो कटिजे पियो
0: साईं।
1: तव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे?
0: अज़ीम सोलंगी कुर्बान ख़ासि
1: करे का मजबूरी हूंदी, को टेक्निकल मसलो हूंदो, मजबूरी हूंदी, तंहिं करे अॼु गीत पिरोली असां कोन्हे रखियो। ठीकु आहे?

0: जी जनाब, मास्टर मंजूर जी सदाउन सा कॉल अटेंड क्यों था दिसूं था हाँ असा गड कॉल ते केर तो जुड़े। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: हेलो वालेकुम सलाम।
0: हां भाई किथा का?
1: भाई न सब गोठ पुन्नू खान पावर तार के सेवन शरीफ का रुस्तम अली पावर पे गलाया।
0: जी रुस्तम पावर साहब, ता सा गड केर पे बुदे
1: असाई ता जो प्रोग्राम तमाम सुठो पे बुदु असा सा गड दिलीप कुमार मेंगोर ता जो प्रोग्राम पे बुदे चोन कुमार कोली
0: लाड़काने स्टूडियो मोरो स्टूडियो मेरा करंट स्टूडियो मटियारी मीरपुर ही सिंध जो सब का वडो ही वक्त ऑन एयर जो नालो है जीए एफएम 88 नेटवर्क। मोहब्बत सिलसिला जारी हो सारी तो हाँ कॉल से केर है कॉल अटेंड कदे केर हों। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी तुम केर पे गलायो? सवाली डंगने का शाबख्श शुक्र अलहमदुल्ला। तुम सा कभी केर तो बुधे
1: मुझे भाई आलम खान डंगणो गुलाम रसूल डंगणो गुलाम अहमद डंगणो चाचा वाहिद बख्श डंगणो अल्लाह यार डंगणो एहसान बख्श डंगणो अली नवाज वापारी डंगणो।
0: मेहरबानी लख थोड़ा सभी जहा मेहरबानी कुर्ब तह दोस्त वरीब सागो अर्ज जैसे कॉल करो था यो सोचो तो कॉल तहजी अचण महल रेडियो परे रखो या रेडियो बिल्कुल घट आवाज के अवल तो बंद कर छो ताकि तवी कॉल पूरी दुनिया सही नमूने बुधे। हाँ अवं पैंजी कॉल बुध न तो रेडियो असि गाल बोल है वह कॉल से तकड़ी बुधा हों रेडियो में घट में घट 40 सेकेंड लेट से ऑन एयर थी इनकर ब गडियल गाल हों अवं भूलजी वा मां भी परेशान थी वेंदस बुधूँ था कॉल से हाँ असा गड केर हों। हलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
0: केर साहब है किथा का?
2: साईं गोठ काजी आरिफ दल के लीहर का वफा यासीन चांडे पे गलाया सर। वेलकम
0: साईं। थैंक यू वेरी मच साईं।
2: गदा इन यामीन अली चांडियो जामिन अली चांडियो यासिर अली चांडियो दिलीप कुमार मेघवार वफा मुनीर अहमद सियाल जिते जिते समातो असांगे बुधी रहियो आइन सबनी के कबूल पे सिक भरियो सलाम।
0: वालेकुम असलम। वालेकुम असलम। मोहब्बत मिठा मानू पे दफो कॉल कई
2: खुश हो जो।
0: ओके जनाब थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जो दोस्त साफ सुथरो शॉर्ट गलए तो सुची गल करे तो उनकी कॉल से गालाइंदे ढो सुठ लगे तो कॉल से हाँ केर आए। हेलो असलम वालेकुम। ओके जी कॉल धनी पान कटे छी वधी कॉल अची चुकी है दिसंदासी केर आहे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
3: हेलो
0: आवाज अचे पे साईं?
3: साईं आवाज आणे अचे पे डबलिंग में आवाज आयो पे चोवन कुमार कोली पे वठ करे जी।

0: जी ॿियो तव्हां सां केरु केर पियो ॿुधे?
1: ख़ुशि आहियो? ठीकु आहे, मज़े में। गर्मी कीअं आहे?
0: अलहमदुलिल्लाह, सुख लॻा पिया आहिनि। तव्हां ॿुधायो। पर रियल में ईअं त साह थो निकिरे, एॾी गर्मी आहे। साईं, उहो मौसम खाते ॿुधाए छॾियो आहे त 26-27 तारीख़ ताईं घुट ई साईं, सभिनी जूं महिरबानी। तव्हां पंहिंजी ख़बर ॾियो, ॿियनि दोस्तनि खे छॾे ॾियो, ॿिया पाण अची वेंदा लाइन ते। बसि बसि बसि, वञो कीअं वण हेठि बीहो, पाण चवन ॻाल्हि ॿुधो, के वण हेठि बीहो, थधी छां वठो ऐं पाणीअ जो ढुक पियो, ऐं दोस्तनि जा नाला तव्हां वठी वरिता आहिनि। ख़ुशि रहो, आबाद रहो, तारनि में चंड ऐं खीर में खंड हुजो। आमीन, आमीन, आमीन। कुर्ब कुर्ब चोवन कुमार कोहली साहब कुंडरी जे हवाउनि खां मां असां सां मुखातिब हुयो, ऐं अव्हां खे ॿुधाईंदा हलूं त ईअं थींदो आहे त मां ब्रेक वठणु चाहियां थो। इंजीनियर जो इशारो अची वियो आहे, ऐं उहो इशारो जेको हूंदो आहे उहो बिल्कुलु कंप्लीट सुठो इशारो हूंदो आहे। पोइ वठूं था ब्रेक।

0: जी जना वेलकम बलिकार खुश आमदीद जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क असां मुखातिब आहे ऐं जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क जे स्टूडियोज़ मां सिंध डी जी शाम में अवां जे मेज़बान यूनिस बकारी अवां खे सलाम पेश करे थो ऐं कॉल्स जो सिलसिलो जारी आहे। नंबर असांजो 0334-3525-786 ॾिसंदा सीधो असां गॾु कॉल ते केरु आहे। हलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, कहिड़ा हाल आहिनि
0: साईं? शुक्र अलहमदुल्ला। अवां केरु साहिब ऐं किथां खां ॻाल्हायो पिया? छा हाल आहे मेहर साहब? ख़ुशि आहियो, ठीकु आहियो, चङा भला। अलाह पाक जा किरोड़े घर में नवां जी दुआ आहे। तव्हां ॾियो ख़बरचार। महिरबानी महिरबानी, लख थोरा। ऐं जी जी, फौजिया सुमरो जो त ट्रैक असां हलाए चुका आहियूं, तव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे? जी जी जी जी जी जी, वालेकुम असलाम। कुर्ब साईं कुर्ब, मौज़ूस ख़ातिर नज़रात, ही आहे जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क ऐं शो आहे जी हा सिंध डी जी शाम। अवां जो नाम यूनिस बकारी साथ आहे, ॾिसंदासीं कॉल ते केरु आहे असां सां गॾु। हलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साईं, छा हाल है मंजूर चांडियो साहब?
2: हेलो
0: जी, आवाज अचे पियो, तव्हां जा कहिड़ा हाल आहिनि? काल खणंदो आहियां, छो कोन खणंदो? हींअर छा खयो आहे? हींअर काल त खई आहे। तव्हां ब्रेक, हा नाला खणी वठो दोस्तनि जा, नाला खणो। जी जी,
2: सरदार चांडियो, बाबर चांडियो।

0: पढ़ो बुला खान सजावल। अच्छा बियो हम सके केर पे बुदे सबनी जेके दोस्त बुधन पे सबनी सा गड बुदो था ये ना आवाज कट जी वे भरल मेहरबानी लख थोरा साईं ओठा साहब थैंक यू भलीकार चवंदा सी करे करे किथा किथा जदे कॉल कंदा ने सजा मौजिस बुधंदड़ तो परी परे के बहराड़ी ने में नेट ना आयो दो इंटरनेट ना आयो दो सिग्नल घट हुंदा इन टावर बंद हुंदा इन वडी कोशिश कंदा इन त कॉल मिले ते उनन की शाबस आए उनन की हिम्मत के सलाम कॉल अटेंड करने की कोशिश कयो ता दिसो ता हाने सा कर के हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम जी चवन खुश
0: हो अल्हम्दुलिल्लाह केर साहब किथा का
1: रवार नसीम रजा जलालानी आए नंढड़ो नवी हैदर जलालानी
0: तमाम घणी मेहरबानी में मोहब्बत हूं जलालानी साहब थैंक यू
1: अल्लाह
0: हाफिज। जी मज़े सामाइन साज़ ऐं आवाज़ जे साथ में शॉर्ट ब्रेक है नंढड़ो ब्रेक है ऐं बिना ब्रेक यूनुस बकारी वापसि ईंदो छो त प्रोग्राम आहे जारी हो सारी नंढड़े ब्रेक खां पोइ वापसि ईंदो यूनुस बकारी।

0: It's 6:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
0: Har din har pehar zindagi ki lehar GFM 88 network Sindh ki aawaz.
2: Dhar mashum warkoti warkoti kadamuna de yow nivi duniya palor rawanvi. خود پولیو رنز دا قدمونو درولی هم شی نو پدی وجا دا پولیو دا هر مهم پا محال دا پولیو ٹیم دا دروازی ٹکولو جواب ورکوی او خپل ماشومانو تا دا پولیو دا مخنیوی دو ساسکی ورکول ماهی روی زکا چه هم دا ساسکی دا ماشومانو دا بدن دفاعی تا کز زیادوی او دا حقی دا خوبونو الوت وزری مومی پولیو یعنی مستقل مازوری
1: सोना सिर्फ जेवर नहीं हर घर की अमानत होती है इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो आज ही 1114752 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें शराइत और जवाबित लागू हैं
3: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है अब जिम्मेदारी हम सब की है हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
5: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारी जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
4: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ए बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए बुड़ी 347-3-41-230
4: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी मेडिकल स्टोर वारन लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो टाइमिंग सुबुह 9:30-6:30 शाम ताईं नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली राबते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 031308631633

0: वेलकम बैक मौजूद सामीन जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क की पेशकश सिंधड़ी जी शाम। सिंधड़ी शाम में आख़िरी लम्हात जो सलाम ऐं आख़िरी लम्हात में यूनुस बकारी वां सां मुख़ातिब आहे। कॉल्स अटेंड कंदा हलंदासीं, ॾिसंदासीं त असां गॾु कॉल ते केरु थो जुड़े। वालेकुम
1: सलाम,
0: कहिड़ा हाल आहिनि? ठीकु आहियो?
1: अलाह जो शुक्र आहे बेटा, तव्हां ॿुधायो तबियत कीअं आहे? फेरी
0: अलहमदुल्ला, अलहमदुल्ला, दुआ लॻी पई आहे। केरु साहब ऐं किथां?
1: पुनल हुसैन मां पियो ॻाल्हायां, घोटकी खां मुंहिंजा मिठा।
0: पुनल हुसैन मेहर साहब, काफ़ी ज़माने खां पोइ कॉल कई आहे, ॾाढी ख़ुशी थी। हा, अलाह करे आबाद हुजो, शाद हुजो, सदाई सुखिया हुजो, जुग जुग जीओ। महिरबानी, लख थोरा, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो। सोणा साईं, अवां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे?
1: जी मुंहिंजा भाउ ॿुधनि था, शमान ॿुधे थो, अकार तव्हांखे सलाम ॾे थो, फौजी शबी सलाम ॾे थो, दिलावर तव्हांखे सलाम ॾे थो। पहिरीं
0: सभिनी खे वालेकुम असलाम। हाणे हर सूमर ऐं हर खमीस ते शाम जो 5 वॻे खां 7 वॻे ताईं साईं साईं आबाद हुजो, शाद हुजो, सुखिया हुजो। थैंक यू जी। पुनल हुसैन मेहर साहब घोटकी खां असांखे ज्वाइन कयो। शमन मीराली साहब जी सुरीली सदाहवान में गुंजे पई ऐं थोरो टाइम असां वटि आहे, जेकर तव्हां कॉल करण चाहियो था त नंबर आहे असांजो 0334-352-5786 ॿुड़ी 3604-3025-786 ते। मुख़्तसिर हाल अहिवाल करियो ऐं कॉल करियो त जी दिलि जी ॻाल्हि थी सघे। कॉल अटेंड कंदासीं ऐं ॾिसंदासीं त असां सां गॾु केरु जुड़ी चुको आहे। हैलो, अस्सलाम वालेकुम। जी हिकिड़ो दफ़ो नालो वरी ॿुधायो, तव्हांजो नालो छा आहे?
2: अब्दुल ख़ालिक उफ़ारो, केकी शाबेलो, पीर मुसाफ़िर साल को पनो, अठ ज़िलो सखर।
0: छा हाल आहे मिठा माण्हू, ख़ुशि आहियो, ठीकु आहियो? अलहमदुल्ला, अलहमदुल्ला। अवां सां गॾु ॿिए दोस्त ॿुधनि था, ॿिया के दोस्त जिन जा नाला खणणु चाहियो? जी जी जी जी जी तमामु घणी महिरबानी मिठा माण्हू, तमामु घणी महिरबानी, आबाद हुजो, आबाद हुजो। जी जनाब, साज़ ऐं आवाज़ साथ जा आख़िरी लम्हात ऐं आख़िरी लम्हात में असां वटि 7 मिंट बाक़ी बचिया आहिनि। 7 मिंटनि में तव्हां असांखे कॉल करे सघो था, ॾिसंदासीं त कॉल ते असां गॾु केरु आहे ऐं कॉल अटेंड थी चुकी आहे, कॉल ते हलंदासीं। हलो, अस्सलाम वालेकुम।

0: It's 7 p.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
3: General Assembly की इफ्तिताही सेशन के बे खिताब कंदो. अठ इस्लामी मुल्कन जे परदेही वज़ीरन पारां गज़ा में लाॻीतो इंसानी अलमीअ जी मज़म्मत वालारल बैतुल मुक़दस में मुस्लिम ऐं मसीह जी तारीख़ी हैसियत मुतासिर करण ते गणती ज़ाहिर बरतानिया ऐं यूरोपी मुल्कनि पारां इसराइली आबादकारीअ ख़िलाफ़ खयल ताज़नि क़दम गैर क़ानूनी कसरायता क़दम खणण जो बि मुतालबो बरेलीअ ख़िते में जटादार पोइ पाकिस्तान सर मिस्र इंडो ऐं उर्दन जे परदेही वज़ीरनि पारां जारी कयल गॾियल बयान में चयो वियो आहे त इसराइल पहिरीं मरहले वारे जाम मनसूबे जूं इल्तवा हेठि ज़िमेवारियूं पूरियूं करे गज़ा में इंसानी इमदाद बहालीअ जो सामान फौरी ऐं बिना रुकावट पहुचायो वञे ॿिए मरहले में इसराइल जी नेकाली ऐं आलमी इस्तेहकाम फोर्स जी मुक़ररी शामिल आहे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जडहें भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाओ जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
3: मातली ऐं आस पास जी अवाम लाइ ख़ुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं।

0: असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
1: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347321230।
4: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुब्तला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं। हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। सुकून, एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगी ॾांहुं क़दम।
0: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
1: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं
1: हा ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
0: 03125252786
1: 6135 7786
0: GAFM रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

तव्हांजो ई मुंहिंजो साथ रहंदो ठीक राति 7 वॻे ताईं सॉरी 9 वॻे ताईं 7 खां 9 वॻे ताईं 7 खां 9 वॻे ताईं तव्हां सां कंदासीं तव्हांजूं ॻाल्हियूं ऐं उन सां गॾोगॾु तव्हांजा मैसेजिस पैगामनामा पजो किताब में हूंदा शामिल।

जेकॾहिं तव्हां प्रोग्राम रसरयाण में शामिल थियण चाहियो था, तरीक़ेकार तव्हांखे ॿुधाईंदा हलो। मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वञी करे टाइप कंदा MTI, थोरी स्पेस ॾींदा, पंहिंजो नालो, ॻोठ जो नालो लिखी करे मैसेज 888-1 ते असांखे सेंड करे

जी हाँ जी अवां जा खूबसूरत नाला असां ताईं पहुचंदा असां प्रोग्राम में कंदासीं शामिल। मुलज़मीन मौसमनि जा हिकड़ा पंहिंजा मिज़ाज हूंदा आहिनि, फितरी अदाऊं हूंदियूं आहिनि, यकीननि मौसमूं पंहिंजे टाइम ते चेंज थींदियूं रहंदियूं आहिनि। ॾिठो वञे त आगस्त महीनो जेको हूंदो आहे उहो गर्मियुनि जो हूंदो आहे, पर हिन साल मौसम जो क्लाइमेट चेंज हुजण करे त आगस्त जो महीनो ॾाढो थधो महीनो रहियो ऐं हुन में ख़ूबसूरत हवाऊं लॻियूं। महसूस ईअं थियो पए त गर्मियूं जेके आहिनि उहे ख़तम थी चुकियूं आहिनि, बहरहाल सितंबर जो महीनो अचण सां ई गर्मियुनि जी शिदत में इज़ाफ़ो थी वियो। हिन वक़्तु गर्मी जी जेका लहर आहे उहा समूरी सिंध में जारी आहे। बूसट वारो माहौल आहे यकीनन, अला पाक पंहिंजो रहम करम करे यकीनन, ऐं गर्मी खां बचण जे लाइ असां ज़रूरी उपाउ वठूं ऐं ख़ासि करे मासूम ॿारनि ऐं पंहिंजो ख़्यालु रखो। हिन शदीद गर्मी में पाणी जो ज्यादा इस्तेमालु करणु घुर्जे। ॾींहं जे टाइम ते तमामु घणी उस हूंदी आहे, शदीद उस हूंदी आहे, सिज जी जेका तपश हूंदी आहे उहा इलाही तेज़ हूंदी आहे। कोशिशि कजे त जॾहिं बि माण्हू ॿाहिरि निकिरे त मथे ते टुवाल को

मौसमनि जा पंहिंजा हिकिड़ा रंग हूंदा आहिनि, पंहिंजा हिकिड़ा मिज़ाज हूंदा आहिनि। फितरी अमल आहे यकीन, अला पाक पंहिंजो रहम करम करे ऐं पंहिंजी बाज करे। इंसान ॾाढो कमज़ोर आहे, असां इंसान जेके आहिनि ॾाढा कमज़ोर आहियूं, असांखे कुझु बि नथो बर्दाश्त थिए। पर कोशिशि इहा ई करणु खपे त अलाह तबारक ताला खां इहा ई दुआ घुरणु खपे, अलाह पाक खे ॿाॾाइणु खपे त अलाह पाक पंहिंजो रहम

जिनके शहर जो तंजा इंतजारी जी मौसम मखिन में अना बेकरारी जी मौसम मखिन में अना इंतजारी जी मौसम मखिन में अना बेकरारी जी मौसम मखिन में अना लुड़क बूंदन जा प्या था बरसन अना आशकवारी जी मौसम मखिन में अना चंड चाहत जो चमकियो ना है अना धारी जी मौसम मखिन में अना माठ वारो नरोजो खुलियो आ अना राजदारी जी मौसम मखिन में अना पोपटन जी पुछा रुलन थियूं अना आजारी जी मौसम मखिन में अना थर जवानी जो नगमो नंगायो अना वाह वारी जी मौसम मखिन में

सर फलकार खान गोठे मोहम्मद बचल खोसो तंगा मैसेज पहुंच चुका है। अली खोसो चाचू वसीम खोसो भात वली खोसो मोहम्मद इकबाल खोसो भात आ जो मोहब्बत ताजो मैसेज पोतो है। लखतोरा गोठ सोनू आराई का असगर अली आराई राशिद अली आराई कुर्बान आराई साहब जो मैसेज पोतो है।

सो की जना प्रोग्राम रसरियान जी पेरी पेशकश है तू मुझो सनम आई मा तुझो सनम आ

शहर गुलाब लगारी खां असांखे मैसेज पहुतो आहे, ॻोठु आहे बशम खान रिंद, उतां खां असांखे शायर गाज़ी खान रिंद साहब यादि कयो आहे, मोहबतूं मिठा माण्हू रिज़वान अली रिंद खान एंड ऐं नंढी कोनी दारा तव्हां लिखियो आहे त आपका शो सुन रहे हैं। अल्लाह पाक आपको FM टीम और सुनने वालों को खुश रखे, आमीन सुम आमीन। हमीद अंसारी खे तव्हां ॿुधण घुरियो आहे, ज़रूर ज़रूर प्ले कंदासीं लख थोरा। शहर गुलाब लगारी खां तव्हां असांखे हमेशा यादि कंदा आहियो, मोहबतुनि में ॻोठु आहे बशम खान रिंद, उतां खां शायर गाज़ी खान रिंद साहब ऐं रिज़वान अली रिंद तव्हां सां गॾु, फैज़ान अली रिंद ऐं शहज़ाद अली रिंद ऐं नंढड़ी कोनेन ज़ारा, कोनेन ज़ारा तव्हां सां गॾु आहे ऐं असांखे नंढा नंढा ॿुधंदा आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु

0: भी जनाब डॉक्टर लाजवाब गीत है।
1: तू मुझो सनम आही।

मल्लिकार्जुन दाई सभिनी खूबसूरत समातुनि खे जिन जिन महिरबानी सां हाणे हाणे जॉइन कयो आहे ऐं पंहिंजी मौजूदगी जो जेकॾहिं अहसास ॾियण चाहियो था त उन जे लाइ तरीक़ेकार बिल्कुलु आसान आहे। मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वञी करे टाइप कंदा एम टी ए थोरी स्पेस ॾींदा, पंहिंजो नालो ॻोठ जो नालो लिखी करे मैसेज 888-1 ते असांखे सेंड करे ॾींदा। तव्हांजा जीअं ख़ूबसूरत नाला असां ताईं पहुचनि पिया, असां प्रोग्राम में कंदासीं शामिल। कुर्बदार किरण भील साहब असांखे यादि कंदा आहिनि मोहबतुनि में, वॾी महिरबानी कुर्बदार। तव्हांजा लख तोरा एम अकरम तव्हां सां गॾु, एम अकरम उतरादी भाउ मोहबतूं तव्हांजूं, तव्हां लिखियो अला जवाब छो आहे। वॾी महिरबानी लख थोरा पंहिंजी मौजूदगी जो अहसास अर्पण जे लाइ। जुड़वी थरपारकर खां वफ़ा गुलाम रहीम भलो साहब जो मोहबतूं चाहतूं पहुचनि पयूं ख़ूबसूरत मैसेजनि जी शिकिल में।

ऐं असांखे अॼु ख़बर पए त केसि ताईं असांजे आवाज़ जी उॾाम थी रही आहे ऐं असांजो मुसाफ़िर आवाज़ किथे किथे पहुची रहियो आहे। उन जे लाइ तव्हां असांखे अहिड़ो मैसेज कंदा। मैसेज करण जे लाइ तरीक़ेकार बिल्कुलु आसान, मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वञी करे टाइप कंदा MTI, थोरी स्पेस ॾींदा, पंहिंजो नालो, ॻोठ जो नालो लिखी करे मैसेज 888-1 ते असांखे सेंड करे ॾींदा।

हुनरी खां चौहान कुमार कोहली ऐं डॉक्टर अनीता चौहान, संगीता पारस ऐं पको मोड़ खां सेठ लालचंद कोहली जो मैसेज पहुतो आहे। वॾी महिरबानी तव्हांखे प्रोग्राम रस रिहाण में भली कार वेलकम चवंदासीं। चौहान कुमार कोहली, डॉक्टर अनीता चौहान, संगीता पारस, लख थोरा। घोट मोहम्मद साले जमारी झिरक शहर जी नगरी खां असांखे शहबाज जमारी यादि कनि पिया, शेर मोहम्मद जमारी, कुदुस जान जमारी, ताज जमारी सां गॾु पंहिंजो उताक ते कनायूं पिया। वॾी महिरबानी साईं, मिठा माण्हू। घोट मोहम्मद साले जमारी यकीन झिरक शहर जी नगरी जो महबूब माण्हू जो घोट आहे, हिते जा माण्हू इलाही मोहबती माण्हू आहिनि ऐं वॾी महिरबानी। सिंधु दरिया जा किनारा आहिनि यकीननि।

छोकी जनाब जेकॾहिं मैसेज करे प्रोग्राम में शामिल थियण चाहियो था तरीक़ेकार तव्हांखे वरी ॿुधाईंदा रहूं मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वञी करे टाइप कंदा आहियूं जी थोरी स्पेस पंहिंजो नालो गोठ जो नालो लिखी करे मैसेज @1 ते असांखे सेंड करे ॾियो। तव्हांजा मोहबत नामा जीअं ई पहुचंदा प्रोग्राम रसरियाण में हुनखे कंदासीं शामिल। गोठ गुलाम हुसैन जलालाणी का नाज फकीर मोहम्मद जलालाणी साहब असांजा तमामु प्यारा प्यारा ॿुधंदड़ रेडियो जा लिसनर सीनियर लिसनर आहिनि। आवाज़ नगर जा साथी भई महबूब नाज़ जलालाणी, मुख्तार नाज़ जलालाणी, आरज़ू असलम जलालाणी, तव्हांजो अस्सलाम अलैकुम लाजवाब प्रोग्राम दिलकश अंदाज मुबारकबाद क़बूल कयो साईं। ख़ैर मुबारक मिठो माण्हू तव्हांजा लख थोरा तव्हांजो प्रोग्राम में शामिल थियण जो यकीन मुंहिंजे लाइ अहसास आहे साईं। नाज़ फ़क़ीर मोहम्मद जलालाणी साहब लख थोरा पंहिंजी मौजूदगीअ जो साईं भलोड़ अहसास अर्पण जे लाइ। फौजी सुमरो खे असां प्ले करे चुका आहियूं तव्हांजे समातुनि जे लाइ। रात सुठी आहे सुहानी ऐं प्रोग्राम आहे रस रियाणी।

मोहम्मद खान मीर मुर्क मीर मलुक नंढड़ी साइमा सिंधु प्यारो प्रोग्राम तमाम बेहतरीन नशर थी रो है वही मेहरबानी मिठा मानो शहर ठटे का शायर मोहम्मद खान मीर मुर्क मीर मलुक नंढड़ी साइमा सिंधु तहजो मैसेज पोतो है वही मेहरबानी लिख थोरा मोहम्मद सलीम वाडो साहेब सोहेल शोबान आजान अली वाडो विलेज इस्माइल वाडो का असा याद कर वही मेहरबानी तक प्रोग्राम में भलीकार रसरियाण में एम सलीम वाडो सोहेल शोबान आजान अली वाडो विलेज इस्माइल वाडो का असा

0: मास्टर मंजूर जो सॉन्ग तुधन घुरो है जी जरूर कोशिश कदासी साई तो अज ती फरमाइश के पूरो कर सकूं। सलाम प्रोग्राम जबरदस्त गुड़ जुड़वी थर थरपारकर का वफा गुलाम रही में जा प्यार पोता चिनी तो आ यारी खबर हाने पवंदी मैसेज पोतो है। अस्सलाम वालेकुम अदा शहर फलकारा गोठे मोहम्मद बच्चल खोसो का मुनीर अहमद खोसे जो मैसेज पोतो है। मुनीर भा लख थोरा वफा गुलाम रहीम ताजा प्यार पोता हमेश जा शहर फलकारा गोठे मोहम्मद बच्चल खोसे का मुनीर अहमद ताजो मोहब्बतू ताजो चाहतू ताजा खोर सारा न्यापा अचन पा जबरदस्त जबरदस्त गीत की तरफ
1: अकेलो
0: अकेलो करे वे।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है, सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
2: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
3: जेकॾहिं तव्हां खे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मी जहिड़ा मसाला आहिनि, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0362-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
4: मातली ऐं आस पास जी अवाम लाइ खु़शख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस, टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
6: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
7: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बहितरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
7: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियणु,

0: औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।

मलिकार चवंदा सभिनी खूबसूरत समातुनि खे जिन जिन महिरबानी सां हाणे हाणे जॉइन कयो ऐं ट्यून कयो आहे जी एफ एम मातली खे, रिवामा ऐं रसरियाण ऐं रसरियाण में अॼु आऊं तव्हां सां मुखातिब तव्हांजो पंहिंजो आरची मोहम्मद ख़ान मेहरी। दोस्तो जेकॾहिं हाणे हाणे तव्हां असांखे जॉइन कयो, ट्यून कयो आहे जी एफ एम मातली खे, त हिकिड़ो मैसेज करियो ऐं असांखे ख़बर पए त किथां किथां तव्हां असांखे ॿुधी रहिया आहियो। मैसेज करण जे लाइ तरीक़ेकार तव्हांखे ॿुधाईंदा हलो, मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वञी करे टाइप कंदा आहियूं जी थोरी स्पेस, पंहिंजो नालो ॻोठ जो नालो लिखी करे मैसेज 888 ते असांखे सेंड करे ॾींदा। यादि कनि पिया असांजा आरची शहबाज़ हुसैन मल्ला, वॾी महिरबानी शहबाज़ हुसैन मल्ला, तव्हां लिखियो आहे त साईं ईअं न करियो रुआड़ींदा छा? न न साईं, छा लाइ रुआड़ींदासीं? अलाह बचो मल्ला बि तव्हां सां गॾु आहे, गुल हसन मल्ला, वॾी महिरबानी मिठा तव्हांजो मोहबतूं आहिनि जो तव्हां असांखे यादि कयो आहे।

यकीनन तव्हांजी पंहिंजी बज़म आहे, त तव्हांजो पंहिंजो चैनल आहे, तव्हांजो पंहिंजो आरचे आहे। प्रोग्राम आहे रात जे सात में, असांजो मुसाफ़िर आवाज़ जेकॾहिं तव्हां ताईं पहुचे पियो त हिन बज़म में तव्हां बि शामिल थी वञो। गुड़ सोराब खां निज़ामानी खां मोहबती मंगण निज़ामानी असांखे ॿुधंदो आहे, वॾी महिरबानी मोहबती मंगण।

ग़ुलाम हुसैन उमराणी प्ले थी चुको आहे घुटु जुम्मू ख़ान ख़ासकेली खां मोहम्मद जुम्मन ख़ासकेली जो मैसेज पहुतो अनवर ख़ासकेली ऐं माजिद ख़ासकेली तव्हां सां गॾु आहे गुरजुमू ख़ासकेली खां मोहम्मद जुम्मन ख़ासकेली मोहम्मद अनीब ख़ासकेली अनवर ख़ासकेली माजिद ख़ासकेली ऐं मुनवर अली ख़ासकेली वॾी महिरबानी ऐं बैकग्राउंड में हिन गीत खे रखंदासीं तव्हांजा नाला खोड़ सारा पहुता आहिनि मैसेज पहुतो अस्सलाम वालेकुम शहर गुलाब लगारी ॻोठ आहे बशम ख़ान रिंद खां शायर गाज़ी ख़ान रिंद जो वरी मैसेज पहुतो आहे फैज़ान अली रिंद तव्हां सां गॾु आहे तव्हां लिखियो आहे मोहम्मद ख़ान

वट बशाम खान रिंद खान तां जो मैसेज बशाम खान रिंद खान शायर गाजी खसेद पोतो पोतो है वडी मेहरबानी फैजान अली तां सा गड आए वडी जो मैसेज पोतो लख थोरा

0: ऑप्टिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं। नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
1: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जो पकी खबरी। छोथा अवां जे घरन जो छितूं पकियूं हुजन त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लगरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लगराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो।
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकानी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयार कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं। हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
5: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
1: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 03132525786।
1: जी हा, 2315-2575-786।
5: GAFM रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

भलीकार चवंदा आहियूं सभिनी खूबसूरत समातम खे जिन जिन महिरबानी सां हाणे हाणे जॉइन कयो आहे ट्यून कयो जी एफ एम मातली 90.4 खे प्रोग्राम आहे रसरियाण रसरियाण में अॼु आऊं तव्हां सां मुखातिबु तव्हांजो पंहिंजो आरसी मोहम्मद खान महेरी समीत करे तव्हां प्रोग्राम में शामिल थियण चाहियो था हिकिड़ो मैसेज कंदा मैसेज करण जे लाइ तरीक़ेकार बिल्कुलु आसान आहे मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वञी करे टाइप कंदा एम टी ए थोरी स्पेस पंहिंजो नालो ॻोठ जो नालो लिखी करे मैसेज 888 ते असांखे सेंड करे ॾियो अलीपुर मोरी खां असांखे यादि कंदा आहिनि जुमन अबड़ो ऐं मुनवर अबड़ो वॾी महिरबानी जुमन अबड़ो साहिब लख थोरा जुमन अबड़ो असांखे हमेशह मौजूदगी जो अहसास ॾियारींदा आहिनि लिखंदा प्रोग्राम ॾाढो लश ऐं लाजवाब आहे मां जुमन अबड़ो साहब लख थोरा तव्हां सां गॾु मुनवर जो तव्हां पंहिंजी मौजूदगी जो भलो अहसास अर्पींदा आहियो जनाब अव्हांजा मैसेज अचनि पिया ऐं जेकॾहिं हाणे हाणे तव्हां असांखे ज्वाइन कयो ट्यून कयो जी एफ एम मातली 90.4 खे प्रोग्राम रस विहाण में तव्हां शामिल थियण चाहियो था हिकिड़ो मैसेज असांखे कंदा तरीक़ेकार तव्हांखे वरी ॿुधाईंदा हलूं जीअं मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वञी करे टाइप कंदा एम टी आई

एम के ई लिखण खां पोइ स्पेस ॾींदा, पंहिंजो नालो, ॻोठ जो नालो लिखी करे मैसेज 888 ते असांखे सेंड करे ॾींदा। मैसेज तव्हांजा अचनि पिया, उन्हनि खे प्रोग्राम में ज़रूर शामिल कंदासीं।

मैसेज पतो है गोठ जाड़ा वाटर का सलीम शेख है नंडड़ी जायदा फरमाश मुमताज मोराई जी ता गया सलीम शेख वड़ी मेहरबानी ता याद कयो है नंडड़ी जायदा ता संग डाए मुमताज मोला के जरूर प्ले कंदा जी थोड़ो इंसाफ गोठ जुमो खान खास केली का मोहम्मद जुमन खास केली मोहम्मद अनीफ खास केली अनवर खास केली माजिद खास केली मुनवर अली खास केली वरी मैसेज पतो है लिख थोरा मैसेज असा पोतो है लिखला अस्सलाम वालेकुम शहर गुलाब लगारी गोठा है मुसाम खान रिंद शाम खान रिंद तां खां संग मैसेज किया शायर गाजी खान रिंद फैजान अली रिंद तां संग गड तां लिखो असां जे गोठ जो नालो जी जी बिल्कुल सही वरतो आहे जेको तव्हां लिखियो आहे

हॉस्पिटल में याद कर पैं मौजूदगी जो अहसास दियारो सिटी मोया विलेज आए हाजी राजी रिंद खान शफीक मोहम्मद याकूब रिंद वली मोहम्मद तासा गड एजा रिंद सलीम शेख नंडी जायदा यकीन प्रोग्राम जो बो हिस्सों है बे हिस्से में जो तुम शामिल थे चाहो था वक्त जो एहसास अठ लगी अरह मिनट थे तुझो ही मुझो साथ रहो ठीक नौ वगे ताई रस रिहाण प्रोग्राम में जहाँ चाहो था अस शामिल थी वनू चिनी यारी न पवंदी चिनी तो आ यारी खबर हाने पवंदी तो जल्दी करियो पंजे मोबाइल जे राइट ऑप्शन में टाइप करियो एमटीआई थोड़ी स्पेस दींदा पंजो नालो गोठ जो नालो लिखी कर मैसेज 888 13 असांखे सेंड

वरी कार चवंदा सभिनी खूबसूरत समातन खे जेके जेके महिरबानी हाणे हाणे जुड़ी चुका आहिनि ऐं GFM 90.4 खे ॿुधाईंदा हलूं त प्रोग्राम ऐं रसरियाण में अॼु तव्हां सां मुखातिब तव्हां जो पंहिंजो आरचे मोहम्मद खान मयरी। सभिनि जेकॾहिं तव्हां पर रसरियाण में रस भरण चाहियो था ऐं तव्हां चाहियो था त असांजो नालो शामिल थिए त असांखे हिकिड़ो मैसेज कंदा। मैसेज करण जे लाइ तरीक़ेकार बिल्कुलु आसान ऐं अॻुणो साॻी मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वञी करे टाइप कंदा आहियूं थोरी स्पेस पंहिंजो नालो ॻोठ जो नालो लिखी करे मैसेज बिलो वेट वन ते असांखे सेंड करे ॾियो। मैसेज पतो आहे भाई केसे हो फ्रॉम जंपीर विलेज अली मोहम्मद सुमरो खां शान लखमीर नादिर अली ऐं यासिर अली लिखतो रहा साईं प्रोग्राम में शामिल थियण जे लाइ। अस्सलाम वालेकुम ज़बरदस्त प्रोग्राम आहे अज़ीज़ सोलंगी मीरपुर ख़ास खां वफ़ा ग़ुलाम रहीम बलोच वॾी महिरबानी प्रोग्राम में शामिल थियण जे लाइ। वॾेरो हसन अली मल्ला अलीपुर खां असांखे यादि कयो आहे। वॾेरो सावण मल्ला ऐं शमीर मल्ला

तव्हांखे कराईंदा शहबाज़ हुसैन मोहबती हुसैन मल्ला बि गॾु गॾाए ऐं बाबा साईं अब्दुल हुसैन मल्ला जी साईं वॾी महिरबानी तव्हां असांखे कनायो पिया ऐं पंहिंजी मौजूदगी जो भलो वॾो अहसासु पियो आहे असां तव्हांखे प्रोग्राम रस्ते में भली कार चवंदासीं।

0: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ ख़ुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
1: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस, टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
2: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमज़ोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, TB, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
3: एड्रेस, दंदो रोड, अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 03704495244।
4: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
1: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 03132525786।
1: जी हा, 2315525786।
4: GAFM रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

याद न करे दिल विसरल कहानी के, याद न करे दिल विसरल कहानी के, विसारे छड़जे हाणे गाल पुराणी के।

लबाइन मिलंदा झुकल तारन का दर्द बाइन मिलंदा सदा दिल सियाणी के हा एक शाम गुजरी के अजनबी सा विसारिया माकी उन जी वराणी के बलिकार चवंदा सभिनी खूबसूरत समातुनि खे जिन जिन महिरबानी सां खे हाणे हाणे जॉइन कयो आहे ट्यून कयो आहे जी एफ एम मातली खे इस्लामकोट खां नाज़ निसारा मंद अबड़ो ऐं आफ़ताब अली अबड़ो असांखे यादि कयो आहे वॾी महिरबानी साईं इलाही परे खां ऐं जेकॾहिं अॼु वाकई असांजी इस्लामकोट ताईं नशरात वञे पई त पोइ वाह वाह नाज़ निसारा मंद अबड़ो ऐं आफ़ताब अली अबड़ो लख थोरा त असांखे पंहिंजी मौजूदगी जो अहसास ॾियारियो आहे तव्हांखे भलीकार चवंदासीं शायदि पहिरियों भेरो तव्हां शो में शामिल थिया आहियो ॻोठ सरता बॉन्ड्री खां सलीम शेख हामिद शेख सालिम शेख ऐं नंढड़ी ज़ाहिदा जो वरी मैसेज पहुतो आहे बैलेंस ख़तम थी वियो वफ़ा ग़ुलाम रहीम बलोची मैसेज पहुतो आहे का ॻाल्हि नाहे सुञा ईअं थींदो आहे वॾनि शहरनि में शहर फलकार खां ॻोठ आहे मोहम्मद बचल खोसो खां मुनीर अहमद खोसो यादि कयो ऐं सगीर अहमद तव्हां सां गॾु आहे वॾी महिरबानी साईं प्रोग्राम में शामिल थियण जे लाइ लख थोरा सोराब खान निज़ामाणी खां मोहबती मंगल निज़ामाणी जा प्यार पहुता ऐं नंढड़ो अहसान मंगल निज़ामाणी रहमान मुगल खे तव्हां ॿुधण घुरियो आहे कोशिश कंदासीं।

那मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वही कर टाइप करदा एमटीए थोड़ी स्पेस दिना पांजो नालो गोठ जो नालो लिखी कर मैसेज 8881 दे संग सेंड कर दींदा।

वॾी महिरबानी, तव्हां पहिरियों भेरो प्रोग्राम में शामिल थिया आहियो। रसूलाबाद खां आबिद हसन शंबाणी। वॾी महिरबानी, तव्हांखे प्रोग्राम में भलीकार चवंदासीं लख थोरा प्रोग्राम में शामिल थियण जे लाइ।

रात जिन साथ में तांजा प्यारा प्यारा नाला पोचन पा यकीन असा ढी खुशी थी है तो तेरे पानी मौजूदगी जो भलोड़े सर पीना प्रोग्राम मुतलिका पाया राया पाया मशुरा दिना

चवंदा सभिनी खूबसूरत समातुनि खे जिन जिन महिरबानी असांखे हाणे हाणे जॉइन कयो ट्यून कयो जे फेमातली 90.4 खे रसरियाण रसरियाण में अॼु तव्हां सां मुखातिबु तव्हांजो पंहिंजो आर जे मोहम्मद ख़ान मेहरी खोरसारा असां ताईं पहुता आहिनि असांजा आरजे अमान ला शाह सैयद अमान ला शाह साहब असांखे ॿुधनि था अब्दुल जब्बार शाह अब्दुल सबूर शाह ऐं अब्दुल कुद्दूस शाह बेबी मुसवेरा शाह ऐं बेबी जवेरा शाह तव्हां सां गॾु वॾी महिरबानी तव्हां लिखियो आहे दिलीप कुमार खे सलाम।

वडी महिरबानी अमाला शाह साहब लख तौरा तां असां खे यादि कयो आहे। इस्लाम कोट खां नाज़ निसार अहमद अबड़ो ऐं मोहम्मद करीम अबड़ो साईं तव्हांजो आवाज़ सवा घटि अचे थो। जी प्यारा बिल्कुल तव्हां निशानदी कई आहे लख तौरा, इहे तव्हांजो मोहबतूं आहिनि। इस्लाम कोट खां नाज़ निसार अहमद अबड़ो साहब तव्हांजो ॿियो मैसेज पहुतो आहे, वॾी महिरबानी। असीं तव्हांजी मोहबतुनि जा थोराईता आहियूं। मोहबती मंगल निज़ामाणी असांखे यादि कयो आहे, नंढो अहसान मंगल निज़ामाणी। घुट मोहम्मद साले जमारी झिरक शहर खां शहबाज़ जमारी कुदुस जान जमारी ऐं शेर मोहम्मद जमारी तव्हां सां गॾु आहे। लख तौरा तव्हां मैसेज करे प्रोग्राम में शामिल थिया आहियो। अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम जंपीर विलेज आहे मोहम्मद अली मोहम्मद सुमरो खां शान लखमीर ऐं नादर अली यासर अली सुमरो लिखंदा प्रोग्राम लाजवाबु।

0: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
2: खराब वर्ताव ईरान जे ताकतवर न पर कमजोर होजण जी निशानी

0: वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बे गडियल कौमन जी जनरल असेंबली इजलास में शिरकत लाइ पहुची वो। वज़ीर आज़म जनरल असेंबली के इफ्तिताही सेशन के खिताब कंद।
1: गडियल कौमन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस गुजरियल दहाके में शुरू थियल जंगियन तबाहियन जा असर छड़िया। जंगियों बेहसी से जारी रहियूं शहरियन के निशानो बणायो वियो। जंगियन में इंसानी हक पामाल करण समेत भुख के हथियार बणायो वियो। रुगो फौजी ताकत सिक्योरिटी मुआशी कुवत ते इस्तेकाम की जमानत न है। अमन के क्याम लाए सभी के गड़ी कम करना पवंदा। जनरल असेंबली इजलास से खिताब कंदे एंटोनियो गुतरेस ताकत जो इस्तेमाल मसलन जो हल ना है। आलमी कानून सभी लाए बराबर आहिन। अमन लाए एक हंद वही मसलन जो हल करणो पवंदो। जंग हर सूरत में बंद इमदादी सामान की फराहमी जारी रहन घुर्जे। जहाज रानी की आजादी भी बहाल थियण घुर्जे।

ईरानी सदर मसूद पशक्यान गडियल कौमन के इजलास में शिरकत लाए न्यूयॉर्क रवानो पर डेही वजीर अब्बास अराग़ची पेरे ही न्यूयॉर्क पहुंतल। अब्बास अराग़ची है तो गडियल कौमू आलमी अमुन ए सलामती जो तहफ़ुज़ करण तम थी चुको है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ़ है तो हाँ ईरान मिजाइल दुनिया में कहें भी हंध के टारगेट के निशानो बनाए सकन था। ट्रंप पंजी ताकत ईरान से मढ़ी नो सके, ईरान जमी बीठल है।

0: वफ़ाक़ी हुकूमत जो धरणे वारे मामले ते पीटीआई सां गॾु करण खां इनकार वतारण चयो आहे त पीटीआई वारनि वटि तारीख़ सुठी नाहे, उन्हनि सां ॻाल्हियूं करण जो को बि फ़ाइदो नाहे। पेशावर में तकरीब ख़िताब कंदे ऐं मीडिया सां ॻाल्हाईंदे अतारण चयो त तहरीक इंसाफ़ खे इस्लामाबाद में अची अमन अमान जी सूरत हाल ख़राब करण जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी। पीटीआई वारा होश खां कम वठनि ॿी सूरत।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। धर्म

शहर में मुसाफिर मरन था अवेला नच जो नजारन बुधायो। चपन सा अवां न चपन सा अवां को न ओरी कहानी समूरो किसो नैण कारण बुधायो। चपन सा अवां को न ओरी कहानी समूरो किसो नैण कारण बुधायो अन्या कहें भी जुल्फन के नाहे पखेड़ियो। अन्या कहें भी जुल्फन के नाहे पखेड़ियो

अञा कंहिं बि ज़ुल्फ़नि खे नाहे पखेड़ियो मोहिन जे दड़े खे धनारनि ॿुधायो अचनि था इझो ग़म अचनि था अचनि था अचनि था इझो ग़म अचनि था अखियुनि खे इहो इंतज़ारनि ॿुधायो इहो छेर छमको वञे थो बखन ॾे इहो छेर छमको वञे थो बखन ॾे ॾखण खे वणनि जे इशारनि ॿुधायो पुछियोसीं हवा जा ज़ख़्म केर सिबंदो पुछियोसीं हवा जा ज़ख़्म केर सिबंदो तुंहिंजो जाम शोरा सितारनि ॿुधायो बहारनि ॿुधायो नचारनि ॿुधायो अव्हां जो पतो अश्कबारनि ॿुधायो।

दोस्तों प्रोग्राम में शामिल कंदासीं राहत फतेह अली ख़ान जी खूबसूरत आवाज़ में ही प्यार भरियो गीत किसी रोज़ मिलो ग़मे शाम ढले। अचो तो गॾिजी इंजॉय कयूं इन गीत खे।

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
1: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے، صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے۔ اب ذمہ داری ہم سب کی ہے، ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں۔ پولیو مطلب مستقل معذوری۔
2: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान, वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ अते बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं। हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम।
2: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ़ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ़ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, बेचैन, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
4: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
5: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियणु, औरतुनि जे मख़सूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियणु, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
5: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खु़शख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुंचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबह 9 खां 6:30 वगे शाम ताई। नोट असां वट लूज गोरियों या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नजद अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
6: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
7: सुनते रहो GFM 90.4।
8: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
6: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
8: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
6: ऐं हा, गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
8: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
8: 03312525786।
6: जी।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।
2: अभी चपंजी उफक रंग लालाण हारे कुठोआ, चण्यासी बरियासी अवेला अकेला, चण्यासी बरियास चण्यासी बरियासी अवेला अकेला, सिवा तो सितमगर सियारे कुठोआ, न बेड़ी न जोड़ा पानी फुड़ो को, न बेड़ी न जोड़ा न पानी फुड़ो को, अखिन के सिंधुअ जे केदारे कुठोआ। कंदे माठ मोहन अन्या केसी ताई, कंदे माठ मोहन अन्या केसी ताई, बुधा तो के कहें ओ विसारे कुठोआ। बुडी वियो मिठी निंड में गोठ सारो, बुडी वियो मिठी निंड में गोठ सारो, असा के खिली तारे तारे कुठोआ, पुसल शाम जे हर इशारे कुठोआ, चुनी कहें हवा में उडारे कुठो। जी दोस्तों, वेलकम बैक। प्रोग्राम जी पहरी कॉल अटेंड कंदा से असा सा गद कॉलर शामिल है प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, केर साईं किथा खां? हेलो, अवां जो आवाज क्लियर कोन पियो जे पेरा। सोडो खान जरदारी, वेलकम भलीकार मोरो खां। मुझे जानी केड़ा हालन प्रोग्राम में बहरल मुझी कोशिश होंगी हर मानू की हर दोस्त की कॉल शामिल क्या प्रोग्राम में, पर केतरी कॉलू मिस भी थी वेंदियुन।
3: जी सर
2: वस में हो प्रोग्राम जो पैटर्न हो जा, तो मां हर दोस्त के कॉल पान क्या, पर हाने असा मजबूर हूं कॉल तवां जो मोहब्बत उन कयो पया।
3: जी जी मौला कंदो ही प्रोग्राम तवां जो हलंदो रहंदो, कामयाबी तां के
2: मिली रहंदी। वडी मेहरबानी, लख लाइक को प्यार जो पैगाम का दिल जी गाल,
3: बस दिल की गाल है, बस हमेशा प्यार में रहो, मोहब्बत में रहो, बदी से रहो, एक के साथ रहो।
2: दोस्तन जा के नाम शामिल क्यों भला?
3: दोस्तन का नाम है जेका सो मुंगा प्रदन न सुहेल जरदारी, कपाल जरदारी, मुखिया जरदारी, नमाला हक जरदारी, अशरफ जरदारी, शरियाल जरदारी, प्यारा जेके बुदन पे उन के मुंजे तरफ सलाम रखी याली मदद।
2: वालेकुम सलाम सखी पीर मौला अली मदद, बड़ी मेहरबानी प्यारा, कुर्ब लव यू,
3: मौला आबाद कन,
2: आबाद कन, सलामती।

0: ज़बरदस्त दिलचस्प ॻाल्हियूं थी रहियूं आहिनि। सो कचहरी कंदासीं अवां सां। अस्सलामु अलैकुम, केर साईं किथां खां? हलो हलो साईं, अव्हांजो आवाज़ कोन पियो अचे। माज़रत खां आहियूं, आवाज़ कोन अचण जे सबब ॻाल्हि ॿोल कोन थी सघंदी अव्हां सां। सो ॻाल्हियूं बि थींदियूं रहंदियूं ऐं अव्हां जी पसंदि जा ट्रैक बि शामिल कबा प्रोग्राम में। ऐं अव्हां खे ख़बर आहे त 10 वॻे बिल्कुलु हिकिड़ो न्यूज़ ब्रेक बि हूंदो आहे, कमर्शियल बि हूंदो आहे। सो इन 3 मिंटनि जे विच में असीं अव्हां जी फरमाइश, अव्हां जे हुकुम जी तामील कंदे जलाल चांडियो जी ख़ूबसूरत आवाज़ में मुंहिंजी दिलि अव्हां सां अड़ी आहे। अचो त गॾिजी इंजॉय कयूं हुन ट्रैक खे।
1: दिल वस न दिलदार वसवो, दिल वस न दिलदार वस दली बई जोड़ा वरसात उन तू वजी बजी आवारी घनेरी वात हाणे रूह ते रूह।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।